0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग पहली

आज नगरी में रंग है बहार है, गली गली देखो रस की फुहार है।

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
7: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।

0: श्री सिंह ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
1: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
2: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्य ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bagged silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. We have more from a correspondent.
6: During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. Highlighting the importance of citizen-centric governance, the Prime Minister said that the people of India must remain at the center of governance. He reminded that every decision and policy should be guided by interests and aspirations of the common citizen. Mr. Modi Modi stressed that while India is making significant investments in infrastructure, equal priority must be given to developing indigenous technologies. The meeting was attended by Cabinet Secretary, Secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
5: The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill, Union Minister Dr. Jitendra Singh said the new legislation reaffirms the government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. He said at the same time it is also a reiteration of Prime Minister Narendra Modi's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
7: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
5: BJP MP Bansuri Swaraj termed the legislation as a transformative step and said such legislation is the need of the hour to ensure fair and transparent examination.
8: In a democracy as complex as ours, in a democracy as large as ours, an examination is definitely the truest, most meritocratic ritual. Because this is one ritual where, under the same cloth, the son of a laborer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions, and get judged by the same yardstick.
5: Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav expressed concern over the paper leak of various examinations. Mr. Yadav said that the NEET UG paper was leaked this year despite the new Act Public Examinations Prevention of Unfair Means was made in 2024. Abhishek Banerjee of AITC, Labu Sri Krishna, Devaraya Yalu of the TDP, Dr. Srikant Shinde of the Shiv Sena supported the bill. The TDP MP also called for decentralized question paper setting committees. Dayanidhi Maran of the DMK asserted that the national eligibility cum entrance test NEET is the core issue, which is not uniform and is against students. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra accused the government of failing to protect the interest of the students and weakening the education system.
9: This bill contains no concrete measures to prevent paper leaks. How will this build confidence among the country's youth? Merely forming new committees will not suffice, regardless of who heads them. The Radhakrishnan Committee too was formed to bring about systemic improvements, yet not a single one of its recommendations has been implemented to date.
5: The discussion remained inconclusive. The presiding officer, Sandhya Ray, adjourned the House to meet at 11 a.m. today. Delhi government has approved the Delhi Lakshmi Yojana, DLY, marking a significant step towards the economic empowerment and social security of women. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The scheme's guidelines were approved at the cabinet meeting chaired by Delhi Chief Minister Rekha Gupta. A provision of 5,110 crore rupees has been made for the scheme in the 2026-27 budget. The scheme aims to strengthen women economically while empowering them socially. Talking to media in New Delhi, Delhi CM Rekha Gupta said that the portal for the scheme will open on the 1st of August. The Chief Minister said the scheme will cover eligible women between 21 and 60 years of age whose family income is up to 2.50 lakh rupees per annum. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. Bharatiya Janata Party will launch the nationwide Sri Guru Ravidas Maharaj Samrasta Sankalp Abhiyan today, coinciding with Guru Purnima, to mark the 650th birth anniversary year of Sant Shiromani Guru Ravidas Maharaj. We have more from a correspondent.
3: The campaign will be formally inaugurated at the birthplace of Sant Ravidas in Sir Govardhanpur, Varanasi today. Chief Minister Yogi Adityanath is scheduled to visit the birthplace of Sant Ravidas today evening, where he will pay obeisance and seek blessings. As part of the campaign, soil from the sacred birthplace of Sant Ravidas will be placed in 131 Kalash and sent to various parts of Uttar Pradesh and other states across the country. A Samrasta Sankalp Sabha will also be organized at the venue with a target of around 25,000 participants. The series of programs will continue until February 20th next year, coinciding with Maghi Purnima and the birth anniversary of Sant Ravidas. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
5: Prime Minister Narendra Modi's extended greetings on the occasion of Guru Purnima. In a social media post, Mr. Modi said that beyond imparting knowledge, a guru instills positive energy in the disciples, nurturing them with noble thoughts and virtuous values. In Keralam, yellow alert indicating isolated heavy rain has been issued in 7 of the 14 districts. We have more from a correspondent.
10: Pathanamthitta, Kottayam, Ernakulam, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod districts in Keralam are under yellow alert today, indicating the possibility of isolated heavy rain. 10 districts were under yellow alert last night. Heavy rain is likely to continue across Keralam until Saturday. Moderate rainfall has been reported across the state since early this morning. Smithy M. Palluruthi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
5: The death toll in the brutal state crackdown in the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK has risen to 30 in the past 2 days, with many more injured. According to the local group Joint Awami Action Committee, JAC, the Pakistani military fired on tens of thousands of peaceful protesters, killing 25 people on Monday and 5 more on Tuesday. The POJK is currently engulfed with a wave of protest against the Pakistani authorities since months. Meanwhile, Amnesty International has called for an independent and transparent investigation into reports of the use of lethal force against protesters and POJK by Pakistani forces, while urging Pakistani authorities to restore communication services and allow media and independent observers access to the region. We spoke to Pakistan watcher Om Prakash Das about the recent brutal crackdown by Pakistani forces in POJK.
11: The current count of fatal casualties are besides the hundreds reported in the last 2 months. The actual figures are expected to be very high, which is not coming out due to the complete communication blackout imposed by Pakistan in POJK. This has rightly been highlighted by the Amnesty International. Remember, Pakistan has a history of firing bullets on unarmed civilians.
5: The United States Central Command has said that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, forces launched multiple ballistic missiles last night in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the West Asia region. In reply, U.S. and Saudi Arabian forces carried out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. We have a report.
12: The U.S. Central Command said that all Iranian missiles launched as part of IRGC's surprise attack were successfully intercepted and the U.S. forces remain vigilant and at a high state of readiness. U.S. also claimed that over 30 IRGC-directed aerial drone attacks were made in the last 72 hours. The recent strikes in the West Asia region came hours after U.S. President Donald Trump met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House. The Israeli leader described the meeting as one of the best conversations they have had, citing close coordination on Iran and other security issues. With Chirag's report, Payal Sharma, Akashwani News, Delhi.
5: At the ongoing Commonwealth Games CWG 2026 in Glasgow, Gulveer Singh and Harjinder Kaur both added silver medal to India's tally. We have a report.
13: Gulveer Singh scripted history by becoming the first Indian athlete to win a medal in the men's 10,000 meter race event after claiming a silver. The reigning Asian champion finished behind Australia's Kai Robinson at the Scoutstown Stadium. Moreover, Harjinder Kaur also added a silver to India's medal tally in women's 69 kilogram weightlifting event. The 29-year-old Indian weightlifter finished with a combined lift of 227 kilogram to secure India's 7th medal from 8 weightlifting events in Glasgow. Also, this was Harjinder's second consecutive CWG medal, as she had won bronze at Birmingham in 2022. With this, India's total medal count at the Glasgow Games rose to 12, including 2 gold, 7 silver and 3 bronze. Meanwhile, 4 Indian boxers have secured guaranteed bronze medals, which they will aim to convert into silver or gold when they will take it to the ring in the semi-finals. Lovlina Borgohain secured India's first guaranteed medal in women's 75kg event, while Preeti Pawar punched her way into the women's 54kg semi-finals. Priya Ghangas assured herself of at least a bronze by defeating Scotland's Nia Mitchell 4-1 in her women's 60kg quarterfinal match. Jadumani Singh also stormed into the men's 55kg semi-finals to expand India's guaranteed boxing haul. Chirag Jha from Sports Desk.
14: And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
15: Thank you, Abhishek. Prime Minister Narendra Modi becomes world's most followed leader on Instagram, notes the Pioneer. Government calls paper leak bill a milestone. Opposition asks why tear gas lathis used, writes the Tribune. Supreme Court moots independent probe into police action on students, headlines the Statesman. The Indian Express in its editorial piece for Keigo Higashino, moral ambiguity was plot twist, writes that at a time when thrillers replace emotional depth with relentless pace, it was his exploration of what lies behind whodunits that made the 68-year-old Japanese writer, who died on Monday, a global phenomenon. Rath Yatra concludes with fervor in Odisha, states the Asianate. Zidane realizes his dream as he takes charge of France football team, reports the Pioneer. And finally, British authors dominate this year's Booker Prize long list, released on Tuesday and made up of 13 worldwide books written in English, a selection that rewards risk in great fiction writing, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
14: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes the first Indian to win silver medal in the men's 10,000-meter race at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

Tomorrow.

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: আওর ভয়েস গেটস ইউ হার্ড এভরিওয়্যার।
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
2: অনুৰাগ মোৰ গীত,
3: আলাপ অনুৰাগ,
2: আভৰণ
3: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখাত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 বজাত প্ৰচাৰ হৈ আছে আলাপ অনুৰাগ। অসমৰ বৰেণ্য শিল্পীসকলৰ কৰ্মজীৱনৰ আধাৰত ৰচিত এই ধাৰাবাহিক প্ৰামাণ্য আলেখ্যালানীৰ ৰচনা আৰু প্ৰযোজনা অজয় কুমাৰ বৰাৰ।
4: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ক্ষন্তেক পাছতেই হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি আৰু সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান।
5: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिड़ला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
6: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
5: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
7: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।

0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. Lok Sabha Speaker Om Birla alleged that some opposition members are deliberately disrupting the question hour, which is not appropriate. He added that obstructing the proceedings of the House in a planned manner is not in accordance with parliamentary traditions. The Rajya Sabha was also adjourned till 12 noon over the same issue. When the House assembled at 11 a.m, several union ministers laid the paper on the table of the House. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today alleged that Congress members did not speak on the provisions of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 during the debate and raised unrelated political issues.
2: Rahul Gandhi is using all kind of undemocratic languages which is not in the setting for correct discourse in parliamentary democracy. One must use civilized and soft language. We may differ with each other, but the way Rahul ji is using this demeaning kind of languages which is not good for democracy, which is not good for our country.
1: The proceedings of the Lok Sabha has resumed now and Rajya Sabha is adjourned till 2 p.m. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. India's total exports reached a record $863.1 billion in the financial year 2025-26. The government informed the parliament yesterday that the surge is driven by strong growth in both merchandise and services exports and supported by expanding market access under the country's free trade agreements. According to the Ministry of Commerce and Industry, merchandise exports stood at $441.8 billion, while services exports reached $421.3 billion. The Bharatiya Janata Party will launch the nationwide Sri Guru Ravidas Maharaj Samrastha Sankalp Abhiyan today, coinciding with Guru Purnima, to mark the 650th birth anniversary year of Sant Shiromani Guru Ravidas Maharaj. The campaign will be formally inaugurated at the birthplace of Sant Ravidas in Sir Govardhanpur, Varanasi today. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings on the occasion of Guru Purnima. In a social media post, Modi said that beyond imparting knowledge, a guru instills positive energy in their disciples, nurturing them with noble thoughts and virtuous values. In Assam, the official flood death toll has risen to 75, with 7 more deaths reported yesterday from Sibusagar district alone. The flood situation in the affected districts of Upper Assam is gradually returning to normal, with flood waters receding from most areas. Essential services, including electricity, have been restored in a majority of the flood-affected localities. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma has announced an ex ratio of 4 lakh rupees for families of persons who lost their lives and flood-related incidents without the requirement of a post-mortem examination. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining number of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings saying, India is home to 70% of the global tiger population. 13 people were killed following a powerful earthquake that struck the Kumamoto area in southwestern Japan yesterday. Power cuts, damaged transport and intense heat are complicating relief efforts for thousands in shelters. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% higher in the forenoon session today. The Sensex surged 849 points to 77,615, while Nifty rose 248 points to 24,233 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
3: Yeh, Akashvani Guwahati ka Pragjyotishpur hai. मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर. अभी दिन के 12:10 हुए हैं. अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण.

हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम फिल्मी नगमे।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, समाचार के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तरंग, 1:40 पर कार्यक्रम होगा प्रादेशिक संगीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लरी। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। प्रस्तुत है पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए रेस 3 फिल्म से आतिफ असलाम की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए तुम मिले फिल्म से, केके की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे दिल तो पागल है फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने।

हमारे अगले कार्यक्रम फिल्मी नगमे की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल गुरुवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के गीत।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम स्वर छाया। 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम पेश कर रहे हैं कुछ नगमे जिसे हमने चुना है खास आपके लिए। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस नगमे के साथ महेंद्र कपूर की आवाज में गुमराह फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी नगमी। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए कति पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए शारदा रंजन अयंगर की आवाज में, कल आज और कल फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए शालीमार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए तुम बिन फिल्म से चित्रा की आवाज में।

ये 8 हर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर। पेश है कार्यक्रम तरंग। आज का ये विशेष अंक समर्पित है हिंदी सिनेमा के उस अभिनेता को जिसने अपनी दमदार आवाज, शानदार अभिनय और जिंदगी के संघर्षों से कभी हार ना मानने वाले जज्बे के दम पर करोड़ों दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता संजय दत्त की।

संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। वे हिंदी सिनेमा के दो महान कलाकार सुनील दत्त और नरगिस के पुत्र हैं। अभिनय जैसे उनकी खून में था, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से बनाई।

साल 1981 में फिल्म रॉकी से संजय दत्त ने मुख्य अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। यह फिल्म उनके पिता सुनील दत्त ने निर्देशित की थी। दुख की बात ये रही कि इस फिल्म की रिलीज से ठीक पहले उनकी मां नरगिस का निधन हो गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था।

संजय दत्त ने रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और खलनायक हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन जिस किरदार ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया वो था मुन्ना भाई। मुन्ना भाई ने लोगों को सिर्फ हंसाया ही नहीं बल्कि प्यार, दोस्ती, इंसानियत का संदेश दिया।

संजय दत्त के करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1986 में आई फिल्म नाम ने उन्हें एक संवेदनशील और गंभीर अभिनेता के रूप में नई पहचान दिलाई। इसके बाद साजन, सरक, खलनायक, वास्तव जैसी फिल्मों ने उन्हें हर पीढ़ी का पसंदीदा अभिनेता बना दिया।

संजय दत्त का जीवन इतना प्रेरणादायक और चर्चा में रहने वाला रहा कि वर्ष 2018 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म संजू बनाई गई। इस फिल्म ने अभिनेता रणवीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया। इस फिल्म ने एक बार फिर याद दिलाया कि हर इंसान की जिंदगी में कठिन दौर आते हैं, लेकिन हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है।

इसी गीत के साथ हमारा तरंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से, मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीएन फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गुजराती गीतों को। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए मनहर उदास की आवाज में अफसर एल्बम से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए ओरनी एल्बम से पूजा कनुरिया की आवाज में।

उर्नी एल्बम से आपने सुना ये गीत पूजा कनोरिया और प्रफुल्ल दावे की आवाज में। अब सुनिए ये अगला गीत पिंगलू नू सपनू एल्बम से सुरेश राघव की आवाज में ये अगला गीत।

0: कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
1: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
1: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
1: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां के हैं,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना के हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
7: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है। कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन
1: ऑफ टेंशंस। श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
8: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी

0: वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
1: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के प्रसारण में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लरी। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए गुरु फिल्म से एआर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रीत लरी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, जय हो फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रीत लरी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, कुछ कुछ होता है फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रेत लड़ी। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए सरगम फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को के यानी कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों आप खुश तो बहुत होंगे ना, क्योंकि बारिश की ठंडी फुहार तन मन को भिगो रही है। प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है और एक नई ताजगी का एहसास है ना। और मन मयूर झूम उठा है

0: जी दोस्तों, बारिश की रुमझुम रुमझुम, और ये जो बारिश की जो बूंदें हैं उन्हें छू करके एहसास ऐसा होता है कि सारे तन में, तन बदन में, तन मन में एक ठंडक सी पहुंच गई है। और उमस भरी गर्मी के बाद तो झमाझम बारिश के बाद तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है, नदी ताल तलैया पोखर सब लबालब भर जाते हैं। बरसात से राहत तो मिल जाती है लेकिन साथ साथ आफत भी आ जाती है। आफत, आप जरूर सोच रहे होंगे कि आफत के नाम पे तो बाढ़ ही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ और भी कई सारी बातें आ जाती हैं, कई सारी बीमारियां भी आ जाती हैं और वाटर बोर्न डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। जब ऐसी संभावना हो तो सावधानी और सतर्कता भी जरूरी है, ये तो आप सभी जानते हैं। उन बीमारियों के बारे में जानकारी लेना और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करना भी आवश्यक हो जाता है। तो उन सब के लिए हम है ना जी, हमारा रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम है ना। पूछ लीजिए, बस डायल कीजिए, बेझिझक डायल कीजिए। हमारा नंबर 011-2342-1080, 2342-1080, और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। और आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप इसी वक्त सवाल पूछिए और जानकारियां लीजिए। और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी। आप डायरेक्टर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन मैक्स अस्पताल में। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपको।
1: धन्यवाद कमल जी।
0: और दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। बारिश का मौसम है तो नेचुरली, और रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम है तो हम बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। जी हाँ, डिजीजेस इन रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां, इन सब के विषय में आज हम जानेंगे अपने डॉक्टर साहब से, यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक आप हमसे जुड़ते हैं, चलिए हम आपकी ओर से कुछ सवाल कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब,
1: कमल जी, आज बहुत अच्छा दिन है। अगर आज के दिन को अगर हम देखें तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो ऐसे एक कबीरदास जी का दोहा याद आया मुझे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
0: जी,
1: तो एज अ डॉक्टर मेरे लिए मेरे मरीज सबसे बड़े गुरु हैं। आज के दिन में हम श्रोताओं को गुरु मानते हैं, तो क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शन दिखाता है, श्रोता ही हमें बताते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन का जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। तो मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और मेरे सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी। और हमारी ओर से भी, आकाशवाणी की ओर से भी, आप सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। तो डॉक्टर साहब, चूंकि ये बारिश का मौसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, देखते हुए अच्छा लग रहा है, भीगते हुए कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार भीगने से और बार बार भीगने से कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और वास्तव में देखा जाए तो बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उनका खतरा लगभग बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए, बरसात के मौसम को अगर हम डिवाइड करें तो एक एक करके जैसे अपन चलते हैं
0: जी,
1: तो सबसे पहले बरसात में जो होता है ह्यूमिडिटी, उमस,
0: यानी कि नमी,
1: नमी, उमस
0: जी।
1: उमस की वजह से जब आप, जैसे अगर बरसात अभी नहीं भी हो रही है एक्टिवली, तो भी जो मौसम है उसमें उमस बहुत ज्यादा होती है, उमस से पसीने बहुत ज्यादा आएंगे
0: जी।
1: तो ऐसे में हम अपने सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहेंगे कि आप जब इस तरह का मौसम आए, रेनी सीजन जैसा मौसम आए, तो बेटर है कि आप कपड़े जो है कॉटन के पहने, जो कि आपकी स्वेट को या जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर सके,
0: सोख सके।
1: क्योंकि अगर वो सोखेगा नहीं तो आपको स्किन डिजीज का सबसे ज्यादा कॉमन खतरा होता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि भीगे कपड़े होंगे तो फंगल इन्फेक्शन के डर होता है। तो शुरुआत में अगर हम ऊपर से शुरू करें तो स्किन इन्फेक्शन, किसी किसी को एलर्जी, इचिंग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती
0: है, फोड़े फुंसियां शुरू हो जाएंगे
1: है ना। अगर कोई यंग बच्चे हैं तो उनके पिंपल्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं वो गर्मी के कारण।
0: अच्छा,
1: तो ये सब चीजें हमें गर्मी के

0: में अगर हम ऊपरी तौर से स्किन डिजीज की बात करें तो, फिर भीगने की वजह से अगर हम बात करें तो भीगने की वजह से क्योंकि टेम्परेचर चेंज इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो आप जो कॉमन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, जिसको खांसी जुकाम है ना, हल्का फुल्का बुखार आना, ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं। फिर कुछ बीमारियां होती हैं जो खराब पानी की वजह से होती हैं।
1: जी,
0: खराब पानी की वजह से, जैसे कि जो पीने का पानी थोड़ा सा खराब हो जाएगा
1: जी,
0: है ना, उसकी वजह से आंत्रशोध या एंट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, अब इन्फेक्शन की वजह से हो जाएंगी। और फिर बाद में पानी के स्टैग्नेशन यानी पानी के रुकाव की वजह से जो मक्खी मच्छर जो पनपते हैं उनकी वजह से बीमारियां होती हैं।
1: जी जी,
0: तो इस तरह से हम बीमारियों का क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही और मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा था, और कई बार हमने देखा भी है और कई बार ऐसा लगता भी है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बाहर से आए बहुत ज्यादा गर्मी लगी है और उसके बाद में पसीना पसीना हो गए हैं, और उसके बाद में कुछ लोग क्या करते हैं कि तुरंत जाकर के नहा लेते हैं, तो इससे किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, कौन सा खतरा बढ़ सकता है?
0: जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कमल जी कि टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी कारण से अगर एकदम से होगा तो उसकी वजह से ना बॉडी का एडेप्टेशन कई लोगों का हो जाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग हम जो सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि सपोज आप कहीं गर्मी से एकदम से आए हैं तो आप अंदर बैठिए, थोड़ी देर अपने पसीने सुखाइए, एक नॉर्मल पंखे में बैठिए, और जब पसीने सूख जाएं और थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन हो जाए फिर उसके बाद आप बाकी काम कीजिए। जैसे कि एकदम से आती ठंडा कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है जी, अंदर आते ही एकदम से नहाना है, तो वो सब आपको थोड़ा सा एक्लिमेटाइज होके फिर करेंगे तो आपका शरीर जो है उसमें आपका साथ देगा और आपको कफ कोल्ड या जो किसी किसी को अगर आपने देखा हो तो एकदम से ठंडा पानी पी लिया आपने गर्मी से आते एकदम से गला पकड़ जाता है, तीन चार दिन तक फिर खराश खांसी और गले में दर्द रहता है, तो ये सब चीजें आप अवॉइड कर पाएंगे।
1: जी, तो इसमें जब इस प्रकार से जब बिल्कुल गर्मी से बिल्कुल ठंडक यानी कि शरीर को ठंडक मिलती है तो और इसमें किस प्रकार की परेशानी हो सकती है, क्या इसमें बुखार होने के फीवर होने के भी चांसेस रहते हैं?
0: हाँ, देखिए बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी शारीरिक प्रक्रिया की वजह से होता है, तो जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा तो वो बाहर जो दिखेगा वो बुखार के रूप में दिखेगा।
1: जी, जी।
0: जैसे अभी हम बात कर रहे थे खांसी जुकाम की, तो खांसी जुकाम होगा तो आपके गले में ये जो जीभ के पीछे की जो जगह होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी किसी के नीचे छाती तक पहुंच जाता है, खराश होने लगती है, तो वो इन्फ्लेमेशन फीवर के रूप में प्रेजेंट करता है। तो बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी का एक साइन है, एक रूप है बीमारी का,
1: लक्षण कैसे। जी डॉक्टर साहब वैसे बहुत सारी बीमारियां तो हैं, तो बरसात के मौसम में अगर सबसे पहले कभी कुछ हो जाता है तो सोचते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहला जो रिस्क होता है वो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है?
0: सबसे बड़ा रिस्क तो जो कॉमन फ्लू होता है जो हम कफ कोल्ड बोलते हैं ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जो कि बरसात के ऑनसेट के साथ ही स्टार्ट हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और दूसरा जो होता है वो है एंट्राइटिस यानी आंत्रशोथ यानी पेट के इन्फेक्शन।
1: जी जी,
0: अब वो कोलेरा की वजह से हो, चाहे टाइफाइड की वजह से हो, चाहे दूषित पानी का मिश्रण जो आपके पीने के पानी में है उसकी वजह से हो, ये अलग अलग इसके स्रोत हैं जिसकी वजह से हो सकता है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि जो बरसात के पानी के साथ मिट्टी के रास्ते से नीचे, जैसे मिट्टी से पानी बरसात का पानी एब्जॉर्ब होता है आपका जो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और वो प्यूरिफिकेशन अगर उसका ठीक से ना हो तो वो उसको हम लोग पैरासिटिक इन्फेक्शंस बोलते हैं।
1: यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसे हम डायरेक्ट ना पिए, उसे छान कर पिए, उबाल कर पिए, तो ये कुछ हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है,
0: बहुत हद तक। मतलब अगर हम सबको बोलें कि भाई आप उबला हुआ पानी पीजिए, उबले हुए का मतलब होता है कि आप उसको रोलिंग बॉइल 20 सेकंड्स कम से कम अगर आप बॉइल करके पियेंगे तो आपकी ये जो पेट वाली परेशानियां हैं, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे।
1: जी, तो इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा कि 20 सेकंड्स तक, इसमें भी कुछ टेम्परेचर अगर कुछ क्या कहते हैं,
0: रोलिंग बॉयल कहते हैं सर, हाँ, इसको मतलब जब बॉयलिंग शुरू हो तब आप उसको 20 सेकंड लाइए।
1: अच्छा, तो यानी कि पूरी
0: कम से कम
1: कम से कम
0: कम
1: तो
0: से
1: कम से कम 20 सेकंड तक बॉयल हो जाए, उसके बाद ठंडा करके पिए या हल्का हल्का
0: ठंडा करके पिए
1: तो हल्के हल्के, कुछ लोग क्या रहते हैं कि चाय की तरह फूंक फूंक के पीते हैं।
0: देखिए सर, ये आप की क्या आदत है और आपको कैसे पसंद है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है।
1: जी,
0: हम ये एडवाइस करते हैं कि बॉइलिंग वाटर के बाद आप उसको ठंडा करके, चाहे आप साफ बोतल में रख के उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारा पर्पस है कि आप जो बॉइलिंग वाटर से हमारा जो बैक्टीरिया है या पैरासाइट्स है वो मर जाए, ताकि आपको इन्फेक्शन की मात्रा, इन्फेक्शन कम से कम हो।
1: जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हम अपने श्रोताओं को एक बार अपना नंबर बता दें जिससे कि वो हमसे संपर्क कर सकें, आपसे संपर्क कर सकें और अपने सवाल पूछ सकें। तो श्रोता मित्रों एक बार नोट कर लीजिए हमारा फोन नंबर, और वो है 011, यानी कि दिल्ली का ये एसटीडी कोड है। इस फोन नंबर से पहले 011 जरूर डायल कीजिएगा, 2342-1080, और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082, यानी कि 2342-1080, और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। दोस्तों अगर आप फोन नहीं कर पा रहे हैं और आपको समय है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप अपना अपनी समस्याएं भेज सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप भेजने के लिए यानी कि मैसेज भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा नंबर 9868107070। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे और बहुत सारी जानकारियां भी आपको मिल सकेंगी। तो डॉक्टर साहब यहां पर एक मैसेज हमारे पास आ गया है और इन्होंने लिखा है कि आपको यानी कि मुझे और डॉक्टर गुप्ता जी को गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू सर।
1: बरसात में बच्चों को नहाने का बड़ा शौक होता है, इन्होंने लिखा है, और ये कहते हैं कि बच्चे जानबूझकर भीगते हैं तो उनका डॉक्टर साहब क्या मार्गदर्शन करेंगे। ये लिखे हैं नरदेव सिंह चौहान जी कोटद्वार उत्तराखंड से, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल चौहान साहब, बच्चों का तो सबसे बड़ा शौक बरसात में घूमना है और बरसात में भीगना है। आप उनका बचपन मत छीने, उनको घूमने दें, उनको विचरण करने दें बरसात में, लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं सबसे पहले उनका जो काम होना चाहिए माँ बाप का वो है कि कपड़े चेंज करें, उनका सिर सुखाएं और उनको थोड़ी देर के लिए बिठा दें और फिर ही कुछ खाने या पीने को दें। अगर हम ये सब चीजें अगर करेंगे तो बच्चों को बीमारी का कोई दिक्कत नहीं
1: है। ये तो अच्छी बात बताई कि यानी कि शरीर भीगा नहीं होना चाहिए बरसात में, भीगने के बाद में उसको पोंछ करके सुखा देना चाहिए।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, एक और
0: चीज कमल जी, कि कई बार क्या करते हैं कि बच्चे अंदर आते ही एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है।
1: ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी करना चाहिए कि आते ही कहीं से गर्मी से आ रहे हैं तो तुरंत ही उसी समय एयर कंडीशन में ना बैठें, बच्चों को भी ना बैठने दें, बल्कि एक नॉर्मल पंखे की हवा से, अगर आपके पास पंखे हैं तो पंखे की हवा से अपने शरीर को सुखाएं, उसके बाद ही आगे का जो भी कार्य है
0: जी
1: खाना पीना है वो करें। डॉक्टर साहब एक और मैसेज आया है, और ये है मोहित जी और इनकी उम्र है 43 ईयर्स, ये आगरा से है। कहते हैं कि शुड वी यूज बॉइल्ड वाटर ओआर और कैन यूज वाटर ऑफ आरओ फिल्टर्स ऑल्सो, यानी कि दोनों इन्होंने ये कहा है कि आप आरओ का वाटर यूज करना चाहिए या फिर बॉइल्ड वाटर, दोनों में क्या फर्क होगा।
0: जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जब कभी भी हम पानी के उबालने की बात करते हैं तो इसमें दो क्राइटेरियाज हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम दिल्ली या आसपास में रह रहे हैं तो 20 सेकेंड रोलिंग बॉइल अप टू 1 मिनट
1: अगर आरओ का पानी है तो भी।
0: जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम कभी भी पानी की जो टीडीएम है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं आपके जो बायोलॉजिकल चीजें हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, कोलेरा का जो है या पैरासाइट्स हैं उसको नष्ट करने की।
1: जी डॉक्टर,
0: अगर हम आरओ की बात करते हैं तो आरओ में कुछ अलग टाइप के आरओ भी आते हैं जो बैक्टीरिया को भी रोक सकते हैं। अगर आपका आरओ उस लेवल का है तो आप आरओ का पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आरओ का जो काम है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही अगर आपका आरओ कर रहा है तो फिर वो आपको इन्फेक्शन से यूजुअली नहीं बचा पाता।
1: जी तो कोशिश कीजिए कि पानी बॉइल हो जाए और वो भी 20 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड बॉइल हो जाए तो बेटर रहेगा।
0: इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से 1 मिनट भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 20 सेकंड भी अगर आप कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा।
1: जी बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार कमल सर को भी नमस्कार और गुप्ता डॉक्टर साहब को भी प्यार भरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम।
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी रघुवीर जी बताएं कैसे हैं आप।
2: बस ठीक है डॉक्टर साहब भी। और मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम तो उत्तराखंड में पहाड़ों में जैसे कि बारिश तो होती थी, भीगते तो है रोजमर्रा की जिंदगी में, गाय के लिए चारा पत्ती लाना पड़ता है, तो एक तो भीगने से ये सुना है कि मच्छर काट देगा तो बीमारी हो जाती है, जैसे मलेरिया वलेरिया भीगने के तुरंत बाद। दूसरा ये है कि जैसे भीगने से

0: कोई सर्दी जुकाम या ऐसा बदन में ऐसा हो जाता तो हम हॉस्पिटल तो रहते नहीं है, तो लेकिन आसपास से कोई दवाई खा लेते हैं। तो ये क्या ठीक है कि नहीं है? और भीगने से कोई, मच्छर काटने से कोई बीमारी तो नहीं होती?
1: जी डॉक्टर गुप्ता जी,
2: देखिए पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूंगा कि भीगने से, जैसे अगर आपको खांसी जुकाम या गले में दर्द होता है, तो अमूमन ये जो भीगने के बाद वाला होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन तो ये सेल्फ लिमिटिंग यानी अपने आप ठीक हो जाता है, आपने गर्म काढ़ा चाय पी उससे ठीक हो जाता है। तो और अगर नहीं ठीक होता है तो आप कुछ एंटी एलर्जिक या विटामिन की गोली लेते हैं, उसी से ठीक हो जाएगा। अब अगर ये 3-4 दिन से ऊपर का है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और वो डॉक्टर अपना टेस्ट करके देखेंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ही किसी एंटीबायोटिक की जरूरत है,
1: जी।
2: अदरवाइज तो ये यूजुअली इसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग ही अपने आप ठीक हो जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, इसमें इन्होंने कहा कि भीगने के बाद में अगर मच्छर काट लेता है तो क्या इससे भी मलेरिया?
2: भीगने से मच्छर का कोई मतलब नहीं, मच्छर पनपेगा तब जब आपके पास स्टैगनेंट यानी कि खड़ा हुआ पानी होगा, जैसे कि हमारे किसी पॉट में चला जाए, हमारे किसी बर्तन में रखा हुआ रह जाए, या बाहर जो कूड़ा है या जो नालियां हैं उसमें पानी जो है उसका बहाव कम हो जाए, तो मच्छर वहां से पनपेगा। और वहां से जो मच्छर पनपेगा वो मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह की बीमारी कॉज कर सकता है। भीगने के बाद मच्छर एक्टिव हो जाएगा या मच्छर की बीमारी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब सिर्फ उसी से है कि स्टैग्नेंट पानी में मच्छर का पनपना बढ़ जाता है, मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, और इसका कोई भीगने से इसका कोई मतलब नहीं।
1: डॉक्टर साहब, तो जो मच्छर होते हैं क्या जो हर मच्छर है, यानी कि हर मच्छर के कोई भी मच्छर काटेगा तो बीमारी हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगा?
2: नहीं, अमूमन ऐसा नहीं होता। मलेरिया का जो मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो से होता है, और जो चिकनगुनिया और जो डेंगी है
1: जी
2: वो एडीज मस्किटो से होता है।
1: जी हाँ,
2: तो ये दोनों मॉस्किटो अलग अलग होती हैं। तो अमूमन हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रेश वाटर जो मॉस्किटो होती है वो एडीज होती है
1: जी,
2: और जो गंदे पानी में जो पनपती है वो एनोफिलीज होती है। तो अगर आपके नालियों में गंदा पानी है, एलगी है, तो वहां पे जो पनपेगी वो एनोफिलीज मॉस्किटो होगी, तो उस एरिया में मलेरिया की तादाद हो सकता ज्यादा हो
1: जी।
2: और जिस एरिया में फ्रेश वाटर स्टैग्नेशन होता है, जिसमें जैसे कि बरसात का पानी है, आपके घर का जो वेस्ट वाटर है या जो रेन ड्रेन पाइप्स जहाँ पे खुलते हैं, वहाँ पे अगर स्टैग्नेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एडीज मॉस्किटो की पनपने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से चिकनगुनिया और डेंगी होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया कि जहाँ पर नाले नहीं है, पानी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जंगल झाड़ यानी कि झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी मच्छर होते हैं?
2: हाँ, लेकिन झाड़ियों में जो पेड़ पौधे में जो मच्छर होते हैं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो उन झाड़ियों में नीचे थोड़ा बहुत पानी स्टैग्नेशन होता है, वहीं जैसे घास है, घास में डैम्पनेस होगी, बरसातों में जो डैम्पनेस है वो बढ़ जाती है, तो इवन अगर आपका जो घास है उसके ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी पानी होगा तो मच्छर उसमें भी पनप जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ये डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, ये तीनों मच्छर से ही होते हैं, लेकिन किस प्रकार के मच्छर से होते हैं अभी आपने बताया, लेकिन हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि डेंगू या मलेरिया चिकनगुनिया इनमें क्या क्या अंतर होता है, इनमें क्या अलग अलग अलग अलग इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार क्यों ना हम अपने श्रोताओं को फिर अपने फोन नंबर बता दें और कि वो हमसे अभी इसी वक्त कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं, और नंबर नोट कर लीजिए 011-2342-1080, और उसके बाद में दूसरा नंबर है 2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो सब जब तक अपने लिसनर्स के कॉल आते हैं तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं।
2: ठीक,

0: और इस लवली ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और आपके सवालों को लेने के लिए तैयार हैं, आपको जानकारियां देने के लिए तैयार हैं और आपको अपने डॉक्टर साहब से बात करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि एक फोन कॉल आ गया है और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो सर, मैं राधा गुप्ता बोल रही हूँ दिल्ली से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार राधा जी।
1: सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे ये मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है तो सर मुझे सुबह उठते के साथ छींके आनी शुरू हो जाती है, आँख से भी पानी आना और आँखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है सर, और मेरे सिर में भी थोड़ा हल्का दर्द होता है। तो सर ये क्या ये इन्फेक्शन है कोई सर, क्या ये एलर्जी है मुझे?
0: जी डॉक्टर साहब,
2: देखिए पुख्ता तौर से तो मैं नहीं कह पाऊंगा राधा जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से अगर ये घंटे डेढ़ घंटे में ठीक हो जाता है तो अमूमन इस तरह की चीज़ों को हम एलर्जी का ही नाम देते हैं। इन्फेक्शन हम तब बोलते हैं जब साथ में बुखार भी हो आपको।
1: तो नो सर, बुखार नहीं होता सर, बस ओनली इसी मौसम में शुरू हो जाता है, जैसे ये मौसम चला जाएगा सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है।
2: हाँ, तो जिस तरह का आप बता रहे हैं किसी किसी को ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से इस तरह का होता है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे मिलके आप कुछ विटामिन की दवाई लिखवा सकती हैं और कुछ नेजल स्प्रेज भी आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनके कंसल्टेशन के बाद ही।
0: डॉक्टर साहब, इन्होंने ये भी कहा कि इनकी आंखों से पानी आने लगता है।
2: जी, आंखों से पानी के पर्याय अलग अलग हैं कमल जी। जैसे आंखों से खाली पानी आता है तो उसको हम एक तरह का एलर्जी मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आंखें लाल भी होती हैं और आंखों में से मवाद या पानी आता है तो तब उसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो अमूमन ये बरसात के मौसम में किसी किसी को हो जाता है, तो यूजली इसको भी हम ब्रॉडली फ्लू में बोलते हैं, इसको आई फ्लू बोल देते हैं या फिर कंजंक्टिवाइटिस बोल देते हैं। तो अमूमन इसमें भी किसी बड़े एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, तो क्योंकि ये अमूमन इसका जो स्रोत होता है वो वायरल होता है, तो आप बस आंखों को प्रोटेक्ट करना है, आपको हाइड्रेटेड रखना है और एक दूसरे से आंख
0: कॉन्टैक्ट नहीं करना है।
2: आईज का कॉन्टैक्ट गलत है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आई जैसे आपने आंख पहुंची अपने हाथ से, वो हाथ आपने किसी को लगाया और उसने फिर वो हाथ अपने आंख पे लगाया, ऐसे आई फ्लू फैलता है। देखने से
0: नहीं होता। कई लोग काला चश्मा लगा के रख लेते हैं।
2: काला चश्मा लगाने का पर्याय दूसरा है। काला चश्मा लगाना इसलिए क्योंकि फोटोफोबिया, यानी कि जब आप रोशनी में जाते हैं बाहर तो आंखें चौंधिया जाती हैं, तो उस चीज के लिए काला चश्मा हम लोग एडवाइस करते हैं। काला चश्मा आंख से आंख देखने से आई फ्लू होगा ऐसा नहीं, उस चीज के लिए नहीं दे रहे हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप जब कभी इस प्रकार से आपको आई फ्लू हो जाता है तो आप अपने हाथों से अगर आपने अपनी आंखों को पोंछ लिया है और उसके बाद किसी और के साथ में हाथ मिलाते हैं और के साथ में संपर्क में आते हैं तो आपको भी यानी कि सामने वाले को भी आई फ्लू हो सकता है।
2: जी,
0: तो इससे बचना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, एक तो अगर सपोज मुझे आई फ्लू है तो मैं अगर अपनी आंख पहुंच भी रहा हूं तो मुझे अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करना होगा, या तो मैं बार बार अपना हाथ धोऊं साबुन से या फिर मैं एक अल्कोहल जो
0: सैनिटाइजर
2: होता है उसको यूज करूं जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो, 60% अल्कोहल।
0: जी, और जो अपने जो कपड़े हैं उनको भी अगर एक बार पहनने के बाद में अगर उनमें भी चला जा सकता है,
2: इसलिए हम लोग कहते हैं कि कपड़े आपके हमेशा धुले हुए और साफ कपड़े पहनने हैं आपको बरसातों में, खासकर अगर आप रोज चेंज करते हैं तो और भी अच्छा।
0: जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम?
3: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या पूछना चाहते हैं?
3: 28 मेरी उम्र है।
0: जी,
3: तो सबसे पहले तो एंकर साहब और डॉक्टर साहिबान दोनों को बेहद शालीनता से नमस्कार और आभार।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।
3: डॉक्टर साहब, मेरे तीन सवाल हैं आपसे। और पहला सवाल ये है कि जो वर्षा का पानी से कहा जाता है कि अमृत होता है, और मैं जानना चाह रहा हूँ अगर हम इसको किसी साफ सुथरे बर्तन में स्टॉक करें भर लें तो क्या उस पानी से हमें आई वॉश करनी चाहिए और इसको हम पी भी सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम, कोई हर्ज तो नहीं इससे? बरसात के दिनों में दांत खाज खुजली तो ज्यादा ही हो जाती है, हाथ के हाथ पर जो नेल्स होते हैं नाखून और फंगस ये बढ़ जाते हैं, तो इसका हम घरेलू स्तर पर क्या उपाय करें, और अगर आपके पास होते हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन इंजेक्शन से करते हैं, खून साहब आपको मोड़ मार की नमक आ जाती है। और तीसरा और आखिरी सवाल ये है जी, इंदौर पार्क में ना जिम बहुत लग गई है, तो क्या बरसात के दिनों में हमें जिम एक्सरसाइज करनी चाहिए मशीनों पे, जरा ये बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब,
2: देखिए पहला सवाल जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा साहब, बरसात का पानी अमृत होता है, अगर बरसात नहीं हो तो देश में कुछ नहीं चले
0: जी,
2: ना तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी उपज आएगी, ना देश चलेगा, ना देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। किसी भी चीज़ में अगर कुछ चाहिए तो हमें बरसात सबसे पहले चाहिए, तो इसलिए जो आपने कहा साहब बरसात का पानी अमृत है वो सबके लिए अमृत है। लेकिन अब उस बरसात के पानी का जो हम आजकल वाटर रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम उसी पानी को अगर किसी बर्तन में लेते हैं तो कच्चे पानी के उसमें ट्रीट होता है वो, यानी जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो कच्चे पानी में ट्रीट होगा। अगर वो अनट्रीटेड पानी अगर हम यूज करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बरसात के पानी में कुछ पोल्यूटेड चीजें भी आती हैं, जैसे जो हम अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो अगर हम देखें
0: एनवायरमेंट
2: की वजह से। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये है तो अमृत, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा प्यूरीफाई कर लें और ट्रीट कर लें या उबाल लें तो उसको हम पीने में भी यूज कर सकते हैं, और जैसा आप बोल रहे हैं मुंह हाथ धोने में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि उसको ट्रीट कर लिया जाए
0: जी, छान लें अच्छी तरह से, अगर उसे बॉईल कर लें और उसके बाद में इस्तेमाल करें तो बेटर होगा, आंखों के लिए भी और अपने जो पीते हैं उसके लिए भी, पेट के लिए भी।
2: दूसरा इन्होंने पूछा था कि स्किन डिजीजेस, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है और पसीने ज्यादा होते हैं तो स्किन की डिजीजेस काफी कॉमन होती हैं। इसमें अमूमन तो जो हम एडवाइस करते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, साफ ड्राई और अगर हो सके तो प्रेस किए हुए कपड़े आप पहनेंगे, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन जो हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं या फंगल जो फंगस हमारे कपड़ों पर लग जाती है वो डेड हो जाती है, वो फिर वापस आपके शरीर को दोबारा इन्फेक्ट होने नहीं देती है
0: जी डॉक्टर साहब।
2: तो यूजली तो जैसे जैसे आप सूखापन करेंगे, अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है तो यूजली तो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, किसी किसी को ऊपरी तौर से कोई क्रीम या किसी किसी को खाने वाली गोली की जरूरत पड़ती है, अमूमन ये बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होते
0: जी डॉक्टर साहब। और इन्होंने जो फंगल इन्फेक्शन की बात की है और इन्होंने ये कहा कि खुजली वगैरह सब हो जाता है, और नाखूनों की भी बात कर रहे थे थोड़ी बहुत कि इस प्रकार से नाखून बड़े होते हैं तो उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या?
2: हाँ, जैसे मैंने बताया ना ये दाद खुजली ये फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं, इसको हम लोग टीनिया बोलते हैं, तो इसका इलाज बहुत

0: इजी होता है। अमूमन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपको शुगर नहीं है, आपको किडनी की दिक्कत नहीं है, लिवर की दिक्कत नहीं है, तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक बात और कही कि आजकल कई जगह देखा जा रहा है कि पार्क्स में ओपन जिम है, अगर हम ओपन जिम में अगर अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं तो इसमें एक्सरसाइज तो होता ही है, लेकिन क्या इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो सकती है अगर शारीरिक रूप से लिया जाए तो? और सांस को जी,
0: चलती बरसात में जिम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अगर आप जिम एक्सरसाइज कोई भी करते हैं तो आपको बस यह है कि शरीर के पसीनों का ध्यान रखना है पहला, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, जो मैंने अपनी बातचीत के दौरान सबसे पहले बताया था, तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस अवॉइड करना है। अगर आपकी बरसाती हवा चल रही है तो उसमें आप एक्सरसाइज करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें आपको बीमार होने का या मांसपेशियों में अकड़न होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक और फोन कॉल आया हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं।
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम साहब बताएं।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बारिश में नहाने से घमौरिया वगैरह ठीक हो जाती है, तो हमारे बच्चे या हम लोग क्या बारिश के पानी में नहाएं तो हमारी घमौरिया या स्किन डिसऑर्डर सही हो जाते हैं? कृपया विस्तार से बताएं।
1: डॉक्टर साहब, क्या बारिश के पानी में नहाने से स्किन जो डिसऑर्डर्स हैं, घमौरियां हैं, वो क्या ठीक हो जाती हैं या इसके कुछ और रीजन होते हैं?
0: देखिए, इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बारिश में भीगने से अगर साफ एनवायरनमेंट में आप भीग रहे हैं तो मजा जरूर आता है।
1: थोड़ी सी राहत मिल जाती है, जो खुजली होती है, जो उसमें फंगस जो आ जाता है उसमें अगर भीग जाए तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी कम हो सकती है, खुजली कम हो सकती है।
0: बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा कि इस सवाल का मैं घमौरियों से रिलेटेड जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि बारिश के जस्ट पहले जैसे उमस बहुत ज्यादा होती है, पसीने बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से अगर किसी को कुछ दाने वाने हो गए और बरसात के बाद क्योंकि टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो हो सकता है उस वजह से हो जाए, तो ये लेकिन ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, मतलब इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है कि नहीं ये मैं शायद हो सकता अगली बार पढ़ के आपको बता।
1: जी जी जी जी जी, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज है, और ये कहते हैं कि गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, क्या रेनी सीजन में सर्जरी करवा सकते हैं, आई सर्जरी?
0: हाँ, मतलब रेनी सीजन में सर्जरी का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप नहीं करा सकते या फिर करानी नहीं चाहिए।
1: जी,
0: इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है।
1: हाँ, लेकिन ये है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि पसीना आ जाता है तो उसमें कुछ परेशानी हो सकती है, पानी चला जाता है तो उसमें परेशानी हो सकती है, इस प्रकार की कुछ समस्या हो सकती है क्या?
0: अब इसको हम देखिए ऐसा कमल जी, अगर हम आजकल की बात करें तो सर्जरी के बाद अमूमन आप 3-4 दिन तो घर में ही रहते हैं, तो घर में आपका टेम्परेचर इस तरह का नहीं होगा कि आपको पसीने आए।
1: जी,
0: तो मुझे तो ऐसा कोई खास इसमें कारण नहीं लगता है, इवन हमने भी अपने किसी मरीज को ऐसे सर्दी में या रेनी सीजन में सर्जरी ना कराने की सलाह अभी तक तो नहीं दी है।
1: जी डॉक्टर साहब, सरोज मल्होत्रा जी ही हैं साकेत रट से, और इनका कहना है कि कितना फीवर होने पर बच्चों या बड़ों को मेडिसिन लेनी चाहिए?
0: देखिए, फीवर कितना का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, फीवर का मतलब जब कभी भी शरीर का जो टेम्परेचर है अगर आपके थर्मामीटर में 99.5 से ऊपर का आ रहा हो तो उसको हम बुखार कहते हैं। तो जब बुखार हो अगर वो अपने आप नहीं उतर रहा है तो बेहतर है उसके लिए दवाई ले लें, और उसकी डोज जो है वो बच्चों और बड़ों के हिसाब से, वजन के हिसाब से अलग अलग होती है, तो वो आपके डॉक्टर से सलाह लेके ही करें।
1: डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप मैसेज और है, और ये है अश्विनी शर्मा जी दिल्ली से, कहते हैं कि आरओ वाटर से सिर्फ चाय और खाना बनाने में उसे इस्तेमाल करते समय 20 लीटर वाले बोतल मंगाने पड़ते हैं, तो क्या उससे भी कोई परेशानी हो सकती है क्या, यानी कि आरओ वाटर से?
0: मैं दोबारा सुनना चाहूंगा
1: डॉक्टर साहब। अश्विनी शर्मा जी पूछते हैं कि जो आरओ वाटर से सिर्फ चाय और खाना बनाने का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा जो दूसरा पानी होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कुछ परेशानी हो सकती है क्या
0: आरओ वाटर से? बताया ना, आरओ वाटर से इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट हो जाते हैं, अगर आपके आरओ में कुछ एडवांस्ड आरओ भी आते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन का वो क्लेम करते हैं कि भाई ठीक हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल अपने घर में अगर एक बड़े मर्तबान में या बड़े पतीले में पानी गर्म करके, जैसे मैंने बताया ना, रोलिंग बॉयल में 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का आपको रोलिंग बॉयल करना है, और उसके बाद उस पानी को ठंडा करके आप कैसे भी यूज कीजिए, चाहे आप उसको पीने में यूज कीजिए, खाना बनाने में यूज कीजिए, हर तरीके से वो पानी आपके लिए फिर सेफ रहेगा। आपको अलग से उसके लिए बोतल मंगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, कल ही हमने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया, और हेपेटाइटिस ये जानकारी मिलती है कि पानी प्रदूषित है, और ये काफी लंबे समय के बाद भी इसके लक्षण नजर आते हैं। तो किस प्रकार के जो हेपेटाइटिस है, ए बी सी डी ई, तो इनमें सबसे खतरनाक, जैसे कि कल डॉक्टर साहब से भी हम बात कर रहे थे, तो ए जो है वो उसके लिए किस प्रकार होने चाहिए, बी के लिए क्या होने चाहिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, उन्होंने सारी कुछ बताया। तो क्या ये पानी से जो जन्मते हैं, बैक्टीरिया निकलते हैं, फंगल या फिर इन्फेक्शन होता है, तो ये जो हेपेटाइटिस ए है इसके लिए किस प्रकार के, ये इसका किस प्रकार का लक्षण होता है और इसमें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई
1: जी,
0: ये दोनों प्रदूषित पानी से होते हैं, इसको हम लोग फीको ओरल रूट कहते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे अगर हेपेटाइटिस ए है तो मेरे मल के थ्रू कहीं का पानी अगर दूषित हो जाएगा तो वो वायरस वहां चला जाता है, और फिर जो वो पानी पिएगा उसको वो हेपेटाइटिस होने का डर रहता है। तो बरसातों में काफी कॉमन है, तो जो हमारा सीवर है वहां से पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है, मिक्स हो जाता है, और वो ग्राउंड वाटर अगर प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं होता है तो फिर हेपेटाइटिस ए और ई उससे फैल सकता है। अब हेपेटाइटिस ए और ई को हम लोग अमूमन पीलिया का नाम देते हैं, जो हम लोग आमतौर पर पीलिया बोलते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई ही होता है। तो ये तो इसकी प्रक्रिया हुई फैलने की। इसमें यूजली जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर है, आपका खाने पीने की इच्छा बिल्कुल मर जाती है, आपको उल्टियां हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, लैटिन किसी किसी की सफ़ेद आनी शुरू हो जाती है, आपका पेशाब जो है बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ये सब चीज़ें इसमें होनी शुरू हो जाती है।
1: तो आंखों का रंग भी कुछ पीला सा नजर आने लगता है।
0: जी बिल्कुल, आंखों का रंग भी पीला हो जाता है और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। जी, ये सब चीजें इसमें हेपेटाइटिस ए और ई में होती हैं।
1: जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी और किसी ने पूछा था कि, एक लिसनर ने पूछा था, क्या ग्राउंड वाटर जो है उससे भी कुछ संभावना बनी रहती है हेपेटाइटिस ए की या ई की?
0: जी, मैंने बताया ना, जैसे सीवर का पानी
1: जी
0: या जहां
1: मिक्स हो जाने पे वो जी, लेकिन अगर मिक्स ना हुआ हो और ग्राउंड वाटर जैसे कई जगह
0: बरसातों में मिक्स हो ही जाता है।
1: अच्छा,
0: ग्राउंड वाटर का जो स्रोत है वो ऊपर से जब पानी नीचे जाएगा तो ही ग्राउंड वाटर बनता है।
1: जी जी, तो इसलिए उसका इस्तेमाल कुछ सोच समझ करके करना चाहिए।
0: जी, उबालना सबसे बढ़िया प्रक्रिया है बरसातों में, तो कम से कम आपको पानी उबाल के ही पीना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और इसमें एक डॉक्टर साहब बहुत कम सुनाई देने को मिलता है, और वो है लेप्टोस्पायरोसिस। डॉक्टर साहब, ये किस प्रकार की बीमारी है, बरसात के मौसम में हो जाती है?
0: लेप्टोस्पायरोसिस अमूमन जो दूषित एनिमल्स के यूरिन को यूरिन की वजह से स्प्रेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो पानी है वो दूषित यूरिन से कंटेमिनेट हो जाता है
1: जी,
0: और उसकी वजह से लेप्टोस्पायरोसिस होता है।
1: इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब?
0: लक्षण अमूमन फीवर, बहुत ज्यादा मसल एक, हेड एक, किसी किसी को ब्लीडिंग भी हो जाती है लैटरिन में से, और पेशाब में भी, आंखें बिल्कुल कंजक्टिवाइटिस या रेड आईज बोलते हैं, और अगर सीवियर होता है तो ये किडनी और लीवर को भी इफेक्ट कर सकता है आपके।
1: अच्छा, ये मतलब कुछ ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं?
0: जी, अगर अगर ट्रीट नहीं होता है तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अमूमन जो आजकल हमारी एक प्रचलन हो गया है कैंड चीजें लेने का, जो आपने कैन खोला और कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जूस पी लिया, तो ये भी बहुत कॉमन है लेप्टोस्पायरोसिस का एक रीजन।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जो जितने भी स्टोर रूम्स होते हैं या जितने भी वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे ये स्टोर होते हैं, वहाँ पे चूहे हैं या जिसको हम लोग घूस बोलते हैं, या रैबिट्स हैं, या इवन डॉग्स हैं, उनके दूषित यूरिन, जैसे अगर उन्होंने वो कैन के ऊपर यूरिन कर दिया या यूरिन उस कैन के ऊपर जमा हो गया और आपने बिना धोए कैन को खोला और पी लिया आपने, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी जूस, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल लेप्टोस्पायरोसिस।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कैन की बात की है, तो आपने ये कहा कि उसके ऊपर अगर यूरिन है किसी चूहे का या फिर किसी और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके, तो आप ये तो कैन तो बंद होते हैं डॉक्टर साहब?
0: नहीं, कैन के ऊपर सर
1: जी,
0: जो कैन का एल्यूमिनियम का कैन है
1: जी,
0: उसके ऊपर जहां आप खोलते हैं उस एरिया के ऊपर तो बंद

0: नहीं, मतलब खुला हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे जो यूरिन है वो सूख जाएगा
1: जी।
0: तो जब आप खोलेंगे कैन को तो जो बबल्स या कोई भी जो लिक्विड है वो ऊपर जाएगा और फिर उसी को आप पिएंगे तो वो इन्फेक्शन उसके साथ ही अंदर चला
1: जी। और अक्सर बरसात में देखा जाता है कि चूहे घरों में घुस जाते हैं और बर्तन वगैरह में कहीं कहीं पर ये सब विचरण करने लग जाते हैं
0: जी, जी।
1: तो ये एक परेशानी का सबब हो सकता है।
0: और इसका बहुत छोटा सा सोल्यूशन है कि जब भी आप बाजार से कोई भी कैन जूस या कुछ लेते हैं तो उसको बस अच्छी तरह धो लीजिए, ठीक है। इवन जैसे बर्तन को भी यूज करने से पहले आप धो लेंगे तो इसकी काफी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि आपको लेप्टोस्पायरोसिस।
1: ये अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल चलन हो गया है कैन फूड का या फिर जूस का इस्तेमाल करने का। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो,
2: नमस्कार डॉक्टर।
0: नमस्कार जी,
2: मैं किशन बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जैसे मेरे को हर्निया का ऑपरेशन कराना था, एक मेरी उम्र 75 है। हर्निया मेरे जांघ के बगल में हो रखा है, राइट साइड की जांघ में, तो उसके ऑपरेशन के लिए ये समय सही है क्या
1: जी डॉक्टर साहब? इनको हर्निया
0: मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखिए इसमें मौसम से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपका हर्निया किस लेवल का है और ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है, वो सब डिसीजन आपके सर्जन का है। लेकिन खाली मौसम की वजह से उसको डिले करना है ऐसा हमारी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है
1: जी। किशन जी, आप कभी भी हर्निया का ऑपरेशन करा सकते हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है, इनकी सलाह ये है। और डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप मैसेज है, और ये एक बार फिर इन्होंने नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से पूछा है। एक बार इन्होंने प्रश्न पूछा था और इनका पूछना है, कहना है कि बरसात के मौसम में कैसा खान पान होना चाहिए और किस किन चीजों से परहेज करना चाहिए।
0: देखिए खान पान के मामले में अगर हम बोलें तो ब्रॉडली आपको दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। एक तो कच्चा खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए
1: जी।
0: आपका जो खाना होना चाहिए वो वेल कुक्ड और हॉट हम लोग बोलते हैं, यानी कि आपका खाना जो है अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, और गर्म खाना और फ्रेश खाना खाएं, कभी भी पुराना रखा हुआ खाना ना खाएं
1: जी।
0: अगर हम बात करें फ्रूट्स की या नट्स की तो हमेशा ट्राई कीजिए वो वाले फ्रूट्स लो जो कि आप पील कर सको, जो आप छील सको। यानी छिलका उतरा हुआ डायरेक्ट फ्रूट लेना बरसात के मौसम में थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, और कट फ्रूट तो बिल्कुल ही नहीं।
1: डॉक्टर साहब इसमें तो फिर जैसे आपने कहा कि छील करके पीलिंग पील करके, तो उसमें डॉक्टर साहब इसमें सेब है, अमरूद है, इस प्रकार के, तो इनको तो छिला तो नहीं जाता है।
0: नहीं तो लेकिन आप अच्छी तरह धो तो सकते हैं
1: जी, अच्छी तरह धोया जा सकता है, धोकर ही खाना चाहिए
0: जी, बिल्कुल धोके खाना चाहिए। इवन कई लोग बरसातों में सेब को पील करके भी खाते हैं, इवन अगर अमरूद अगर आप खाते हैं तो अमरूद को आप अच्छी तरह वॉश करके जरूर खाइए
1: जी, जी। तो ये अच्छी बात है कि जब कभी आप इस प्रकार के जो बिना छिले हुए छिलके
0: और धोने के लिए भी हम ये बोलेंगे कि ट्रीटेड वाटर से धोला जाए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप ट्राई कीजिए कि वो ट्रीटेड वाटर से, यानी जो पोर्टेबल वाटर जिसको हम लोग पीने का पानी बोलते हैं उससे धोया जाए
1: जी डॉक्टर साहब।
0: अनट्रीटेड वाटर या बरसाती पानी से बिल्कुल ना धोएं
1: जी डॉक्टर साहब। परहेज करने वाली बात है तो किस प्रकार जो खान पान में आजकल देखा जाता है कि चटपटा खाने की आदत है लोगों को, ऑयली चीज खाने की आदत है, तो बरसात के मौसम में क्या इन सबको अवॉइड करना चाहिए?
0: देखिए जो भी चीज आप जैसे मैंने बताया ना, ऑयली चीज और ये चटपटी चीज अगर खाने भी चाहें तो ऐसी जगह से खाएं जहां पे एक तो फ्रेश मिल रहा हो और ऊपर से वो ओपन ना हो, जैसे कवर्ड हो। जैसे अगर आप कहीं कोई ऐसी तली हुई चीज खा भी रहे हैं तो कवर्ड चीज में रखी हो, उसमें मक्खी मच्छर ना हो
1: जी।
0: तो क्योंकि बरसातों के टाइम पे टाइफाइड होना या एंट्राइटिस होना ये बहुत ज्यादा कॉमन है
1: जी, इसलिए ढक करके रखें और जो छील के खाने वाली चीज है उनको जरूर छील के खाएं, और अगर छील के नहीं खाते हैं तो उसे जरूर अच्छी तरह से ट्रीटेड वाटर से छील के खाना चाहिए और धो के खाना चाहिए जी।
0: और आइडियली आपको हाथ धो के अपना खाना बनाएं और हाथ धो के ही खाना खाएं
1: जी। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लें
0: जी,
1: एक लवली सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं
0: ठीक।

0: और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों का बड़ा ख्याल रखा जाता है और रखना भी चाहिए, और जो नवजात शिशु होते हैं उनको भी बरसात के मौसम में कुछ अच्छी तरह से रखना चाहिए, तो ये किस प्रकार से उनका ध्यान रखे, किस प्रकार से बुजुर्गों का ख्याल रखे, ये दोनों आप थोड़ी सी जानकारी दे दें।
1: देखिए, कुछ जानकारी तो जैसे भी पूरे कार्यक्रम में देते ही आ रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस का ध्यान रखना है, भीगे कपड़े पहन के हवा में नहीं घूमना है। बुजुर्गों में दो चीजें हैं कि एक तो क्या है कि हम अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो मांसपेशियों में अकड़न या मांसपेशियों में दर्द, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या जो बरसाती हवा है उसकी वजह से बढ़ जाता है थोड़ा सा। अगर किसी को ज्वाइंट की प्रॉब्लम है तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम्स या ज्वाइंट पेन्स थोड़े से बढ़ जाते हैं किसी किसी को। दूसरा, अगर हम बात करें कि फ्रैक्चर्स की, तो ये बरसाती मौसम में थोड़े से ज्यादा कॉमन होते हैं, खासकर अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो फिसलन की वजह से या डैम्प, जब शरीर जगह डैम्प होती है तो जब आप सुबह सैर करने जाएं या बाहर निकलें तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलें। अगर आपको लगता है कि इस जगह फिसलन है तो बेटर है कि आप घर में ही वॉक करें या घर में ही कुछ एक्सरसाइज या टोनिंग एक्सरसाइजेस करें। नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो उनके खान पान का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप मदर हैं तो आपको खुद को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद को कफ कोल्ड है या फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो आप बच्चे को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, अभी इम्यूनिटी की बात की डॉक्टर साहब, तो सभी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को और जो एडल्ट है, जो नॉर्मल है, उनको भी इस बरसात के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जैसे मैंने बताया, फ्रेश फ्रूट्स और विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रूट्स की, तो जैसे विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू है या संतरे हैं, ये सब चीजें ज्यादा होनी चाहिए, इवन आंवला
0: जी,
1: तो ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। थोड़ा सा प्रोटीन आपकी डाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए
0: जी। प्रोटीन के अलावा डॉक्टर साहब और किस प्रकार की चीजें ले सकते हैं? अगर खान पान की बात करें तो, अगर फ्लूड की बात करें, फ्लूड में किस प्रकार की चीज ले सकते हैं?
1: देखिए, फ्लूड में हम ORS ले सकते हैं, नींबू का, जो नींबू की शिकंजी होती है वो ले सकते हैं, और नारियल पानी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हम बरसात में, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहेंगे तो, क्योंकि उमस की वजह से अगर पसीना भी निकल रहा है तो प्लेन पानी पीने से बेहतर है कि हम ORS, नींबू पानी

0: पानी या नारियल पानी, इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा लें।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बरसात के मौसम में टाइफाइड की शिकायत भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तो टाइफाइड में इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से इसकी इससे बचाव किया जाए?
0: टाइफाइड भी जैसे मैंने बताया ना, ये आंत्रशोथ यानी एंट्राइटिस का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको जो फीवर होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है एज कम्पेयर टू अदर वायरल फीवर। दूसरा, इसमें फीवर के अलावा आपको दस्त, उल्टी भी हो सकती है और इसमें किसी किसी को कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो अगर आपका फीवर 3-4 दिन से ज्यादा का चल रहा है, आपको लगातार दस्त हो रहे हैं, अगर आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं, आपका एपेटाइट लूज हो रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए ताकि वो आपको एक बार टाइफाइड के टेस्ट करा के देख लें और फिर टाइफाइड का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे दें।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी अगर क्योंकि हमारे पास टाइम वक्त बहुत कम है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दें कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।
0: देखिए, शुरुआती लक्षण करीब करीब सबके सेम होते हैं, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, सभी बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं और बुखार काफी तेज होता है। इसमें बस थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, जैसे कि चिकनगुनिया में जॉइंट पेन्स है या जो रैश जिसको हम बोलते हैं शरीर में जो लाल लाल चकत्ते होते हैं वो ज्यादा होते हैं, थकान बहुत ज्यादा होती है। डेंगू में अगर हम बात करें तो हेडेक बहुत ज्यादा होता है, मसल एंड जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी किसी को आंखों में भी दर्द होता है। मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको बुखार ठंड लग के आएगा,
1: तेज ठंड लगती है,
0: तेज ठंड लगती
1: है, होती है
0: जी, बिल्कुल राइगर जिसको हम बोलते हैं, कपकपी होके और बुखार जो है, फिर उसमें कभी कभार हमें पता ऐसे चलता है कि भाई किसी किसी को हर 24 घंटे में आ रहा है, किसी किसी को हर 48 घंटे में आ रहा है, इस तरह का कपकपी वाला फीवर, तो वो मलेरिया की तरफ ज्यादा जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में यह भी देखा गया कि फूड पॉइजनिंग कई बार बढ़ जाती है, तो फूड पॉइजनिंग ये होता क्या है?
0: फूड पॉइजनिंग एक, जैसे मैंने बताया कि ये दूषित पानी का आपके खाने में मिश्रण
1: जी,
0: और वो आपके जब पेट में जाता है तो वो एक अलग टाइप की प्रक्रिया या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है जिसको हम फूड पॉइजनिंग का नाम देते हैं
1: जी।
0: इसमें उल्टी, दस्त, बुखार, ये तीनों चीज हो सकती हैं, किसी किसी को बहुत ज्यादा हो जाती है तो लैट्रिन में से खून भी आ जाता है। तो ये फूड पॉइजनिंग के अलग अलग मानक होते हैं और अलग अलग ग्रेड्स होती हैं।
1: तो अगर किसी को इस प्रकार हो जाए तो उनको प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड किस प्रकार से किया जाए?
0: अगर आप किसी दूर दराज के इलाके में हैं तो सबसे पहले इसमें हमें जो प्राथमिक उपचार चाहिए वो है डिहाइड्रेशन ठीक करना, यानी कि आपको उस पेशेंट का पानी ठीक रखना है
1: जी,
0: यानी हाइड्रेशन प्रॉपर रखना, चाहे ORS दें चाहे इंजेक्शन से दें, लेकिन वो प्राथमिक उपचार सबसे इंपॉर्टेंट होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारियां आपने दी और हमारे श्रोताओं ने भी कई सारे सवाल पूछे और उनका भी आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। मुझे लगता है कि अपने श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जरूर संतुष्ट होंगे और अगली बार एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे डॉक्टर साहब। और अपने दोस्तों से हम ये कहेंगे कि बारिश का जो मौसम होता है वो खुशियां लेकर के लेकर आता है और स्फूर्ति लेकर के आता है, लेकिन बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहना भी जरूरी है, सावधानी रखनी जरूरी है, स्वच्छता, मच्छरों से बचाव जरूरी है और जो पानी पीते हैं उसे उबला यानी कि उबाल कर पीना चाहिए। तो अगर इन सब ऐसे उपाय करते हैं तो इन बीमारियों की जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और बारिश का मजा लेते रहें। और अब आपसे दोस्तों विदा लेने का वक्त हो चुका है। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, वक्त निकाला आपने और इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आकाशवाणी से जुड़े रहिए और फिलहाल अपने दोस्त के यानी कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पारित हुआ, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा के कथित पेपर लीक के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, मामले की सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस निलंबित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज के खिलाफ ओडिशा सरकार की याचिका खारिज की। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की, कहा क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। वैश्विक बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण को मजबूत करने वाले सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दोनों को बधाई दी है। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष।

का यही सपना होता है कि उसका बेटा ऐसा काबिल बने कि सारी दुनिया उसका गुणगान करे। दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब माता पिता अपने बच्चे की करते हैं अच्छी परवरिश और देते हैं अच्छे संस्कार। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने में आज का युवा सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने बड़ों द्वारा किए जा रहे व्यवहार को देखकर ही उसी व्यवहार को अपनाने की करता है कोशिश। इसीलिए जिस घर में लड़कियों और महिलाओं को घर के पुरुष देते हैं इज्जत, उस घर के बच्चे भी अपने बड़ों का अनुसरण करते हुए महिलाओं और लड़कियों के साथ रखते हैं अच्छा व्यवहार। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से कि क्यों माता पिता को स्वयं एक आदर्श नमूना पेश करके अपने बेटों को ये सिखाना है कि नारी की इज्जत करनी क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा और सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम।

जी हाँ, यही सच्चाई है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे और जैसा हम अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने परोसेंगे वैसा ही फल हम सबको देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपका सभ्य व्यवहार ही आपके लालन पालन का होता है प्रतिबिंब। तो वहीं आपके बोले गए शब्द आपके चरित्र को

0: करते हैं परिभाषित। इसीलिए हमेशा लड़कियों और महिलाओं के प्रति इज्जत और सम्मान का भाव रखना जरूरी है। और आइए अब चलते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ के पास। विनीता जी, जिस तरह का व्यवहार आजकल युवाओं का देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगी?
1: संतोष, ये बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से क्राइम हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे लड़कियों के खिलाफ जुर्म हो या उनको अगवा कर लिया जाए या छोटे बच्चों की तस्करी, ये बहुत खतरनाक है। आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं बच्चों की कि कैसे अगवा कर रहे हैं लड़कियों को, बच्चों को। ये बहुत ज्यादा दुख का विषय है और बहुत ही चिंता का भी विषय है माता पिता के लिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि किस तरीके से सब लोग अपनी राय दे रहे हैं, इतने मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है कि माता पिता को बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, माता पिता को लड़कियों को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से अपनी हिफाजत करें, किस तरीके से उनको बंदूक चलानी सिखानी चाहिए, किस तरीके से लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि दोस्ती ना करें, अनजान लोगों से बात ना करें। मतलब संतोष, मुझे लगता है कि सारी शिक्षा लड़कियों को ही देनी है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे लड़कियां हो। माता पिता सारा जोर अपनी बच्चियों पर दें कि तुम्हें इस टाइम से पहले घर आना है, तुम्हें अनजान लोगों से बात नहीं करनी है, तुम्हें बच के रहना है, तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना है। मतलब संतोष, सारी शिक्षा लड़कियों के लिए है। लड़कों को कोई क्यों कुछ नहीं कहता? माता पिता लड़कों को क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हैं? ये जो हमारे समाज में जो लड़कों को सर पे चढ़ाया जाता है ना, ये वही कारण है कि हमारे समाज का ये हाल है। हमारे बेटे जो होते हैं, हमारे घर में राजा बेटे होते हैं, हम उनको सर पर चढ़ाते हैं, इतना सर पे चढ़ाते हैं कि वो हमारे सरों पर अब नाच रहे हैं। जो लड़के बड़े होकर लड़कियों की हिफाजत करना सीखते हैं, लड़कियों की इज्जत करना सीखते हैं, वो सब तो हम सिखा ही नहीं रहे। सारा काम माता पिता का है, माता पिता की जिम्मेवारी है। माता माता कहते हैं ना, 7 साल की आयु से पहले आप जो कुछ बच्चे को सिखा दो वो सीखता है। मेरा छोटा बेटा जब छोटा था, उसकी बहनें, कजन्स, मेरी भतीजियां, भांजियां सब आती थी, तो लड़कों की आदत ही होती है ना, कूद कूद के मारना, पीटना, लात मारना, थप्पड़ मारना, मतलब उनकी नेचर ही होती है शैतानी करना, और लड़की को चोट लग जाती है वो रोती हुई आती है। मैंने उस समय में ही उसको पकड़ लिया कि नहीं, तुम किसी लड़की को नहीं मारोगे, क्योंकि लड़की को जोर की चोट लग जाती है। आपने तो हल्के में घूसा मारा, लेकिन उसको जोर से लग गई। सिर्फ आप बात करेंगे, और बात भी आप तहजीब से करेंगे। तो किस तरीके से हम अपने लड़कों को बड़ा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घिनौनी तस्वीर हमारे समाज में उभर के आ रही है, इससे तो पेरेंट टीचर मीटिंग अगर करी जाए, अर्थात जो माताएं पिताएं स्कूल के अध्यापकों को मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, उसमें तो मुझे लगता है माता पिता पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। संतोष,
0: तो विनीता जी, कैसे माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करें?
1: सारी शिक्षा लड़कियों को ही नहीं देनी, लड़कों को भी देनी है। लड़के अपने पिता को देखकर बड़े होते हैं। कहते हैं ना, एप्पल डजंट फॉल टू फार फ्रॉम द एप्पल ट्री, कि हम अपने माता पिता को ही देखकर चलते हैं। अगर पिता गाली गलौज से माँ से बात करता है, अगर पिता घर में लड़की के साथ, बिटिया के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको खुले में सांस नहीं लेने देता, तो वही चीज बेटा भी सीख रहा है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी माता पिता की है, और ये सारा गलती जो हो रही है, ये सारी गलती हो रही है हमारे लालन पालन। जिस दिन हम लड़कों को जिम्मेवार बनाएंगे, जिस दिन माता पिता बेटों को बचपन में ये शिक्षा देंगे कि ये लड़की है, ये तुम्हारी बहन है या पड़ोस की लड़की है, इसको आप तहजीब से, तमीज से आप पेश आएंगे, आप उसकी हिफाजत करेंगे, आप उस पर हावी नहीं होंगे, वो भी उतनी ही प्रिय है परमेश्वर को जितना कि एक बेटा।
0: जी जी।
1: लेकिन ये जो बेटा बेटा बेटा कर करके, और जो और दुख की बात संतोष ये है कि जो बेटी होती है उसको भी बेटा बुलाते हैं कि तू मेरा बेटा है, बेटा नहीं है, वो बेटी ही है। बेटी को बेटा बनाने की कोशिश मत करिए, उसको कंफ्यूज मत करिए, वो बिटिया है, वो बेटी है। तो जिनके पास बेटा नहीं होता वो बेटियों को बेटा बेटा बेटा करके बेटा बनाने में लग जाते हैं। उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, जो उनका पहनावा है, वो बेटा बन जाता है। जिनके घर में बेटियां हैं वो एक बेटा ही बना रहता है, जबकि वो एक्चुअली बेटी है। तो ये बहुत गलत विचार है। और देशों में आप देखिए, और समाजों में बेटा हो या बेटी हो, सबको एक बराबर का प्यार, एक बराबर की इज्जत दी जाती है।
0: जी हाँ, लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ एक तरह का व्यवहार रखकर ही हम समाज में बैलेंस बना सकते हैं। एक तरह की सोच और एक तरह का नजरिया ही बेहतर समाज की कल्पना की उड़ान भर सकता है। इसीलिए लड़कियों पर पाबंदी लगाने से पहले लड़कों की सोच, भाषा और व्यवहार पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि शिक्षा और संस्कार दोनों के लिए ही बेहद जरूरी।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और अगर आप अपनी बात को फोन पर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं।

0: और याद रखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें। 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन, जहां पर अल्फाजन जो है

0: ये चलता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ, यूनिवर्सिटी के कॉलेज से मुलाकात होती है और ना केवल उनसे मुलाकात होती है बल्कि वहाँ पे जो लोग हमें मिलते हैं उनसे बात भी होती है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ की जो आबो हवा, वहाँ की फिजा, वो सब कुछ हम आपके लिए समेट कर लाते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। इसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। और आज हमारी गाड़ी कहाँ आकर रुकी है, आज का जो हमारा पड़ाव है, जहाँ हम पहुंचे हैं, वो है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। और इसे एस्टैब्लिश किया गया था, यूनिवर्सिटी ने इसे एस्टैब्लिश किया था साल 2017 में। बहुत ही छोटे से समय में, बहुत ही थोड़े से समय में इसने अपनी एक बहुत ही पहचान, अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, इसने अपनी एक बहुत ही खास जगह बनाई है। और इस दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में जानने के लिए हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची वहां पर, वहां पे की है उन्होंने ढेर सारी बातचीत और उसी के कुछ अंश हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। आप सुन रहे हैं आल्फाजन कैंपस कॉलिंग दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। जानते हैं कि ऋचा ने वहां पर किस किस से बात की।
1: एल्फाजन कैंपस कॉलिंग में मेरा नाम है ऋचा और आज मैं आई हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, एक स्टूडेंट मेरे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम कृतिका गांधी है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट।
1: आप जर्नलिज्म कर रही हैं तो क्या प्लान्स हैं आपके आगे जाके? रेडियो में जाना है, टीवी में जाना है, न्यूज लिखनी है, क्या क्या करना चाहती हैं आप?
2: मेरे को टीवी में जाना है क्योंकि मेरे को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का बहुत शौक है। मेरे पास एक स्किल है जो मैं कोलैबोरेट करना चाहूंगी दूसरे न्यूज चैनल से, अपनी स्किल को कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी।
1: अच्छा, आपको क्या लगता है कि मीडिया का कौन सा ऐसा माध्यम है जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है?
2: सोशल मीडिया।
1: जैसे कई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है जेन ज़ी को, उन्हें नए नए स्लैंग सीखने को मिलते हैं वहां से, मीम सीखने को मिलते हैं और एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
2: जी बिल्कुल होता है, कुछ जो ऐसे स्लैंग्स आते हैं जो हमारे को नहीं बोलने चाहिए वो हम सीखते भी हैं, मगर हमारे को अवेयर रहना चाहिए।
1: क्योंकि आप एक मीडिया की स्टूडेंट हैं, ऐसे में अगर एक सिचुएशन देती हूँ आपको, और क्योंकि आपने कहा कि आप एक टीवी में जाना चाहती हैं, टीवी जर्नलिज्म करना चाहती हैं, मान लीजिए आप एक लाइव इंटरव्यू किसी का कवर करने गई हुई हैं और अचानक से आपका कैमरामैन आपसे कहे कि कैमरा तो चलना बिल्कुल बंद हो गया है, काम नहीं कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे?
2: मोबाइल जर्नलिज्म जिसे मोजो कहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं।
1: वेरी स्मार्ट। अच्छा, अगर लाइव रिपोर्टिंग करते वक्त अचानक से बारिश शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे?
2: वहाँ पे खड़ा रहना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे को रिकॉर्ड करना है, सारा दिखाना है पीछे क्या हो रहा है, मगर हमारे को फेस करने आने चाहिए चैलेंजेस, तो मैं वहीं खड़ी रहूंगी, लाइव रिपोर्टिंग करूंगी।
1: और अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रयास के बाद आपने किसी सोर्स को इकट्ठा किया है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जैसे ही आप वहाँ पहुंचे वो आप सोर्स आपको इन्फॉर्मेशन देने से ही मना कर दे, ऐसे में आपका क्या टेक रहेगा?
2: वहाँ पे जो विटनेसेस होंगे उनसे पूछूंगी, जो गवाह होंगे उनसे पूछूंगी कि क्या देखा आपने, और आसपास के जो शॉप्स होंगे या लोग होंगे जो खड़े होंगे उनसे पूछूंगी।
1: क्या बात है, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ के। बहुत अच्छा लगा कृतिका आपसे बात करके और जितनी जल्दी जल्दी आपने जवाब दिए है ना, मुझे जरूर लगता है कि आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्ज्वल है। आपको भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं, हम आपको बहुत जल्द टीवी पे देखते हैं।
2: थैंक यू सो मच।
1: एक और स्टूडेंट हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: मैम मेरा नाम श्रीनाथ शर्मा है एंड आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एट दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी।
1: तो श्रीनाथ, आगे जाके आप क्या करना चाहते हैं?
3: मैम मैं अपना करियर स्पोर्ट जर्नलिज्म में देखता हूँ आगे, क्रिएटिंग कंटेंट और टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, स्पेशली क्रिकेट एंड इफ नॉट क्रिकेट अदर स्पोर्ट्स एज वेल, फुटबॉल लाइक इट इज ग्रोइंग इन इंडिया। सो एंड नॉट ओनली अ कॉन्टेंट क्रिएटर जो की एक फेस पे फोकस करे स्पेसिफिकली, आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ स्पोर्ट्स ब्रांड।
1: तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने वैसे भी जितने भी लड़के हैं वो सारे क्रिकेट के पीछे बहुत ही क्रेजी होते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है?
3: मैं मेरे फेवरेट क्रिकेटर वैसे इंडियन अगर देखे तो MS धोनी है, बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंड कैपेबिलिटी, नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन बट एज अ विकेट कीपर एंड अ गुड कैप्टन, अ ग्रेट कैप्टन एज वेल।
1: अच्छा, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं?
3: मैम मैंने स्कूल टाइम में अपने क्रिकेट अपने स्कूल के लिए अपनी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और मैं थ्रोबॉल में भी काफी एक्टिव था, और बाकी थोड़ा बहुत मुझे सर ने एनकरेज किया तो मैं बास्केटबॉल की तरफ भी थोड़े टाइम गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय हाइट उन्होंने कहा कि आप अच्छा कर सकते, बट माय फेवरेट विल ऑलवेज बी क्रिकेट।
1: अच्छा, स्पिरिचुअलिटी पे आप कितना बिलीव करते हैं?
3: मैम आई थिंक स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है कि सब कुछ हमारे हाथ में, जैसे अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें, हम गीता की बात करें तो वहाँ भी कर्मण्येवाधिकार हमारे हाथ में सब कुछ है। क्या हो जाता है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है, हम अपने शत्रु भी है, पर अगर हम कुछ अचीव कर भी लेते हैं तो हमें उसके लिए कभी भी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर उसके लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि हम हम आज कुछ भी हैं वो अपने सोसाइटी की वजह से है, अपने एनवायरमेंट की वजह से है। नेचर ने हमें कितना दिया, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फैमिली ने, या इवन एक फ्रेंड का छोटा सा मोटिवेशन भी। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया।
1: अच्छा, यहाँ पर जितने

0: लोग बैठे हुए हैं उनमें से वो आपकी टीचर हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन्हें एक थैंक्स बोलना है आपको कुछ अलग अंदाज, वो बोल के दिखाइए।
1: मैम, मैं यहाँ पर मैं राजिता मैम को थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और जो जो एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट था या फिर एक असाइनमेंट था, उससे उन्होंने पहचाना कि ये शायद आगे कुछ कर सकता है, और उन्होंने उनके थ्रू ही मुझे उन्होंने युववाणी के लिए मोटिवेट किया और मैंने वहां का ऑडिशन दिया, सो आई वॉज सेलेक्टेड एज वेल।
0: क्या बात है, अगर टीचर्स ऐसे हो तो जरूर आप पत्थर से भगवान बन जाते हो। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और क्योंकि आपने युववाणी में कदम रख ही लिया है तो आप बहुत जल्द हम आपको रेडियो पर सुनेंगे। आपको बहुत बहुत भविष्य की शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।
2: नमस्कार, मेरा नाम शिफाली हेमरम है एंड मैं
0: ओके ठीक है, तो एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। टीवी एंकर और फील्ड रिपोर्टर?
2: फील्ड रिपोर्टर।
0: माइक या कैमरा?
2: कैमरा।
0: ब्रेकिंग न्यूज या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू?
2: एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
0: प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया?
2: प्रिंट मीडिया।
0: लाइव रिपोर्टिंग, स्टूडियो एंकरिंग?
2: लाइव रिपोर्टिंग।
0: पॉडकास्ट, रेडियो शो?
2: पॉडकास्ट।
0: अच्छा, कुछ कुछ ऐसे सारे मिथ्स है ना जो मीडिया की पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि आप एक मीडिया स्टूडेंट हैं तो हम चाहेंगे कि आप वो सारे के सारे मिथ्स बर्स्ट करें हमारे लिए। तो जो हमारा पहला मिथ है वो है कि सोशल मीडिया के जमाने में खबरें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, तो जो वायरल खबरें होती हैं वो सारी सच होती हैं, ये एक मिथ है या रियलिटी है?
2: हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया के जमाने में जो वायरल खबरें होते हैं, हर एक खबर अभी सच नहीं होता। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया, तो जो भी वीडियोस क्रिएट होती हैं, ऐसा हो सकता है कि एआई के द्वारा क्रिएट की गई हो। तो हर खबरें जो वायरल होती है वो सच नहीं होता। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा कि आप जैसे ही खबरें सरफेस पे आती है वैसे ही आपको मान लेना नहीं होता, आपको क्रिटिकली एनालिसिस करनी होती है कि ये कितना सच और कितना झूठ है।
0: अच्छा, खबरें हमेशा निष्पक्ष होती हैं, या ये कहूँ कि पत्रकार जो हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष खबरें पेश करते हैं, ये मिथ या रियलिटी है?
2: खबरें कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती।
0: तो क्या आपको लगता है कि जो पत्रकार हैं वो निष्पक्ष होते हैं?
2: हो सकते हैं, किसी किसी ऐसे न्यूज ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो बायसनेस दिखा सके, लेकिन हमारे एथिक्स हमें ये समझाते हैं कि जो भी न्यूज होती है, आप जो भी न्यूज आप प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए।
0: अच्छा, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारी न्यूज का सोर्स जो है वो सोशल मीडिया बन गया है, और जो आपसे पहले श्रीनाथ आए थे उन्होंने भी ये कहा कि बहुत सारी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, तो क्या सोशल मीडिया एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी समाचार का सोर्स है?
2: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा है, और इसमें बहुत सारे मतलब एक सिटीजन जर्नलिज्म भी आ जाता है, वैसे न्यूज भी स्प्रेड होते हैं, बट देन यहाँ पे बहुत रिलायबल सोर्सेज भी हैं। जैसे जो भी प्रिंट मीडिया पहले हुआ करती थी वो भी अब सोशल मीडिया पे आ गई है, तो आप जहाँ से न्यूज एक्वायर करते हैं वो मायने रखती है, तो आप सोशल मीडिया के रिलायबल सोर्स से न्यूज लेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
0: अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, और आज के एपिसोड में बहुत सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स मेरे आसपास हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, और ये जो फ्यूचर के जर्नलिस्ट हैं इनकी क्या राय है वो हम जान रहे हैं। क्या नाम है आपका?
3: नमस्कार, मेरा नाम आस्था उपाध्याय है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म परस्यू करी हूँ एंड आई एम करंटली इन माय फर्स्ट ईयर।
0: तो आपने मतलब आप 5 साल बाद जब निकलेंगी तो आपका बीए और एमए दोनों हो चुका होगा?
3: जी बिल्कुल।
0: तो चलिए एक वन वर्ड चैलेंज आपके साथ प्ले करते हैं, ठीक है? मैं कुछ शब्द बोलूंगी और उन शब्दों को सुनते ही इमिडिएटली आपके दिमाग में क्या आता है आपको वो हमें से शेयर करना है। कॉलेज,
3: पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स,
0: दोस्त,
3: फन,
0: एग्जाम,
3: स्ट्रेस,
0: टीचर्स,
3: इंस्पायरिंग,
0: कैंटीन,
3: फन ऑब्वियसली,
0: छुट्टियां,
3: नानी का घर।
0: तो एक दिस एंड दैट का भी एक क्वेश्चन है, वो आपके साथ प्ले करते हैं। ओके, टी एंड अ कॉफी?
3: कॉफी।
0: हॉस्टल और घर?
3: घर।
0: सुबह की क्लास या शाम की क्लास?
3: सुबह की क्लास।
0: अ बुक और अ ओटीटी सीरीज?
3: अ बुक।
0: असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन?
3: प्रेजेंटेशन।
0: अच्छा, कुछ ऐसी मूवीज होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, कुछ ऐसी इंस्पायरिंग मूवीज के बारे में हमें बताइए जो आप भी देखना पसंद करती हैं और शायद स्टूडेंट्स को देखनी भी चाहिए।
3: सो देयर इज दिस मूवी कॉल्ड द डेड पोएट सोसाइटी, बहुत पुरानी मूवी है एंड इट इज अबाउट अ बंच ऑफ बॉयज जो हॉस्टल में रहते हैं। दैट्स व्हाई आई फील कि करंट जनरेशन में द मूवी इज वेरी रिलेटेबल एंड इट टॉक्स अबाउट हाउ वन ट्रांजिशंस फ्रॉम टीनेज टू एडल्टहुड। दैट्स व्हाई आई फील दैट मूवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा ने भी बहुत सारी ऐसी मूवीज बनाई हैं और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं जो कि काफी अंडररेटेड हैं. सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक एनी मूवी बाय सत्यजीत रे विल गिव अ वेरी वेरी यू नो लाइक डिफाइंड नॉलेज.
0: और जो लोग कहते हैं कि हमें तो पढ़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उनके लिए 3 बुक्स बताइए जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं.
3: तो मैम रस्किन बॉन्ड इज अ राइटर फॉर किड्स मेनली, बट आई फील कि ही राइट्स बुक्स विच आर वेरी इजी टू रीड, दे डोंट हैव ऐसे हाई वोकैबुलरी वर्ड्स, सो दैट इज वन राइटर दैट पीपल शुड रीड. एंड अनदर इज रोल डाल. रोल डाल इज द वन हु रोट मटिल्डा, दैट इज ऑल्सो अ किड्स बुक. बट आई फील जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको ऐसी कहानियां जो इंटरेस्टिंग हो, जो जिनमें बहुत हाई वर्ड्स ना हो, तो रोल डाल. एंड अनदर वन इज सुधम.
0: बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. आप बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे बुक्स के सजेशंस भी मिले हमें. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए.
4: मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ.
0: तो अभी अभी आपका कॉलेज शुरू हुआ है, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी कॉलेज से और अभी कैसा चल रहा है?
4: जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत ही, मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर एज यूजुअल जो बच्चे होते हैं, बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट माय क्लासमेट्स, व्हेन आई मेट देम, थिंग्स आर वेरी नाइस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव वन ऑफ द बेस्ट क्लास टीचर्स एंड लेक्चर टीचर्स, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनके क्लास में.
0: वेरी गुड. अच्छा ये बताइए, व्हाई जर्नलिज्म, व्हाई यू चूज जर्नलिज्म?
4: मैम आई रियली एम आउट गोइंग पर्सन. एक बार मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ इन एनवायरमेंट, अगर मैं नहीं भी हुई, आई लव टॉकिंग. सो जर्नलिज्म इज दैट फील्ड वेर यू कैन एक्सप्लोर, मीट न्यू पीपल.
0: कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिनसे आप मिलना चाहें और आपको एक मौका मिले उनसे कुछ पूछने का, वो सेलिब्रिटी कौन होगा?
4: बहुत सारे हैं जिनसे मैं मिलना चाहूंगी, बट वन ऑफ देम इज इंडियन ओरिजिन रैपर राजा कुमारी. मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ बचपन से, एंड शी इज ग्रोन अप इन USA. मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि मैम आपने वहां रह के इंडियन कल्चर को भी प्रिजर्व करा एंड US के चीजों को भी, शी राइट्स इन इंग्लिश.
0: अच्छा एक चीज और बताइए कि जैसे हम अक्सर तौर पे कहते हैं कि जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही टफ जॉब है फॉर गर्ल्स, ऐसे में बीइंग अ गर्ल आपको क्या लगता है कि क्या फील्ड रिपोर्टिंग गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है?
4: नो. सो मेरे को लगता है कि इन दिस जनरेशन नोबडी केयर्स इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय, यू शुड नो द वर्क. और अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो.
0: तो सोसाइटी का ऐसा कौन सा नॉर्म है जो आपको बहुत ही परेशान करता है, जिसे आप ब्रेक करना चाहती हैं?
4: इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वेर यू आर पुटिंग डाउन पीपल, बी अ सोसाइटी विच कैन एनकरेज पीपल टू गो आउट एंड वर्क. वो सोसाइटी मत बनो जिनसे हम डरे, एक ऐसी सोसाइटी बनो जिनसे हम, जिन पे हम बोल सके कि अगर मेरी सोसाइटी नहीं होती तो मैं शायद नहीं हो पाती है. तो आई वॉन्ट टू लिव इन दैट सोसाइटी.
0: बहुत ही अच्छी बात कही आपने और आई एम श्योर कि आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल करें. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप.
4: थैंक यू मैम.
5: नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में.
0: ओके, क्योंकि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो एक बात बताइए, क्या आप रेडियो सुनते हैं?
5: जी हाँ, मैं रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ.
0: कौन सा स्टेशन आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है? तो कौन सा रेडियो स्टेशन सुनते हैं आप?
5: मैं FM रेनबो सुनना पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा.
0: क्या बात है, तो कौन से शो सुनते हैं आप?
5: मैं इस पे मैसेज मसाला मिक्स जो कि 5 से 6 बजे आता है, अल्फा जैन कैंपस कॉलिंग जो कि 4 से 5 बजे आता है, और बॉलीवुड ट्रेन.
0: क्या बात है, ये सारे जो शोज है ना, ये बताए मेरी भी बहुत फेवरेट है और इन्हें सुनना मैं भी बहुत पसंद कर रही हूँ. क्योंकि आप एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आगे जाकर आपका क्या प्लान है करने का?
5: जी मेरा प्लान है बिजनेस जर्नलिज्म की तरफ.
0: अच्छा, आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो आपकी क्लास में आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है?
5: मेरा जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो यश चौधरी है, जो कि मेरे को बहुत प्रोत्साहन करता है, मेरे को बहुत चीजें समझाता है और मैं भी उसे बहुत चीजें समझाता हूँ. कभी कभार हम नोट्स भी शेयर करते हैं आपस में.
0: और अगर मान लीजिए एक दिन ऐसा हो कि एक एलियन आपके स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में आ जाए, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप सबसे पहले दिखाना चाहेंगे?
5: सबसे पहले मैं उसे अपना कॉलेज कैंपस का टूर कराऊंगा जो कि बहुत ही हरा भरा है, और उसके बाद मैं अपनी सारी क्लासेस एंड उसके बाद मैं अपने टीचर्स से मिलवाऊंगा.
0: अच्छा ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, ठीक है? अच्छा, सुबह जल्दी उठना या देर तक सोना?
5: सुबह जल्दी उठना.
0: ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस?
5: ऑफलाइन क्लासेस.
0: होमवर्क या एग्जाम?
5: होमवर्क.
0: किताबें या मोबाइल?
5: फिलहाल जेंजी हूँ तो मैं मोबाइल को ज्यादा प्रीफर करूंगा.
0: समोसा या मोमोज?
5: मेरे को पंडित जी के समोसे बहुत ज्यादा पसंद है.
0: ओके, तो बीचेस या माउंटेन?
5: माउंटेन.
0: बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं आपने, बहुत ही क्विक जवाब दिए हैं आपने. हमें आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपके सभी सपने पूरे हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं.
5: धन्यवाद.
6: वाकई में। और ये सभी शुभकामनाएं जो है ना वो हमारी तरफ से भी आप सभी लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ये जो पत्रकारिता होती है एक तरह से डेमोक्रेसी का चौथा पिलर इसको कहा जाता है। और हमारा जो मीडिया है वो इस समय बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जहां जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं सुन रही थी तो वाकई में लगता है कि इनके पास ना केवल इस बदलाव से जूझने की क्षमता है बल्कि उसके साथ साथ इनके पास बहुत से नए आइडियाज भी हैं। ब्रेकिंग न्यूज पुराना हो चुका है और उससे हटकर एथिक्स की बातें करना, रियल न्यूज की बातें करना, अलग अलग तरह से सही न्यूज की बातें करना, वाकई में इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू हियर देम। और जिस तरह से नए नए मीडिया जो है वो उभर रहे हैं, ऐसे में जर्नलिज्म

की पत्रकारिता की ये बदलती हुई जो तस्वीर है, इसमें एक नया रंग जो है भरने जा रहे हैं ये हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स, और इन्हीं से हम बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और इसे आप सुन रहे हैं ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। हर बुधवार शाम को ले आते हैं आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कोना, और वहां पर आपकी मुलाकात करवाते हैं उस कोने में छुपे बहुत सारे टैलेंट से, स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, प्रिंसिपल से, और आपको रूबरू करवाते हैं इस बदलती हुई दुनिया से, उस नए जोश से जो आगे आने वाले समय में इस दुनिया की नई शक्ल जो है वो उभारने वाला है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आकाशवाणी रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जिसमें अल्फा जन हर बार आपको ले चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो है वहां हम लोग पहुंचे और वहां पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा और ऋचा ने की वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत। स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन हाँ सही न्यूज वही होती है ना जो सभी तरह के पर्सपेक्टिव दिखाए, सभी दृष्टिकोण जो है वो आप तक पहुंचाए। तो चलिए जानते हैं कि ऋचा ने अगली बातचीत जो की वहां के टीचर्स से, उनका दृष्टिकोण क्या कहता है।
4: अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मेरे साथ यहाँ पर एक टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यतिन बत्रा है एंड आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
4: सर जर्नलिज्म में कहते हैं कि भाषा पर पकड़ बहुत जरूरी है और जैसे कि डॉक्टर संजय वर्मा जी उन्होंने भी कहा कि भाषा बहुत जरूरी है, इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं।
5: सी लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस फ्रीली एंड लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नलिज्म। एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन रीडिंग हैबिट एंड एज वेल एज राइटिंग हैबिट।
4: सर जैसे कि आपने कहा कि लैंग्वेज जो है वो बहुत जरूरी है, आपने ये साथ में ये भी सजेस्ट किया बच्चों को कि वो पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल हम एक हैबिट देख रहे हैं बच्चों में कि वो पढ़ाई से, बुक्स पढ़ने से बहुत दूर जा रहे हैं। ऐसे में आपका क्या सजेशन रहता है अपने स्टूडेंट्स के वो?
5: तो मैं शुरू से ही अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करता हूँ कि वह लिखें। मैं अपनी क्लास में छोटे मोटे उनको टास्क देता हूँ जिससे उनकी रीडिंग हैबिट बनी रहे, राइटिंग हैबिट बनी रहे। मैं उनको अलग अलग राइटर्स के लेख प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे प्रेमचंद हो गया, सदत हसन मंटो हो गया, जिससे उनको अपनी रुचि के बारे में खुद पता चले।
4: तो ये जर्नलिज्म का स्कूल है और यहाँ पर बच्चे पत्रकार बनने के गुण सीखते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आजकल के पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है?
5: जब तक आप अपने समाज को नहीं पहचान पाएंगे अच्छे से, तब तक आप एक पत्रकार नहीं बन सकते।
4: तो बहुत अच्छा लगे हमें आपसे बात करके, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश कुमार दुबे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पत्रकारिता पढ़ाता
4: हूं। सर हम एक सफल पत्रकार बनने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो सर ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो पत्रकार में होने ही चाहिए?
6: अगर राष्ट्रबोध नहीं है, राष्ट्रप्रथम की भावना नहीं है, भारत बोध की भावना अगर भारत के किसी पत्रकार में नहीं है, भाषा का बोध नहीं, क्योंकि हम बहुभाषी लोग, हमारे यहाँ संविधान में भी कई सारी भाषाएं अनुसूचित हैं, तो देश काल परिस्थिति एक अच्छा पत्रकार बनाती है, हम उसमें कुछ चीजें सजाते
4: हैं। बहुत सारी चीजें देखनी होती है एक पत्रकार को, लेकिन साथ ही जो सोशल मीडिया का युग है इसमें जो तरह तरह की भांति भांति की जो खबरें हैं उससे बहुत ही दिग्भ्रमित होता है एक पत्रकार। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो दिशा भ्रमित के अलावा उसके पास और क्या क्या चुनौतियां हैं?
6: सोशल मीडिया पे दो चीजें बड़े अच्छी चलती है, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेती है, इम्पैक्ट नहीं कर पाती। इसीलिए हम लोग अपने कोर्स में एक नया टर्म दो तीन चीजें निकल रहे हैं, डिजिटल अवेयरनेस एंड मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी जब तक नहीं आएगी तब तक फिल्म के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, अखबार, तो आप उसके बहकावे में चले आते। तो दो बातें हो, और संवाद में एक अलग परंपरा है, परंपरा

0: ये है कि विज्ञान मंगल पे चांद ढूंढता है, मंगल पे जीवन ढूंढता है, और पत्रकारिता को जीवन में मंगल ढूंढना।
1: सर बहुत अच्छी आपने बात कही कि बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के तो युग में तो आगे निकले ही, लेकिन साथ ही अपनी जड़ों को भी पकड़े रहें, तभी हम एक श्रेष्ठ पत्रकार बन सकते हैं। सर आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता स्नातक है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ।
1: मैम, डिजिटल मीडिया ने पत्रकारिता को किस तरह बदला है, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि मैम, हमने जो जर्नलिज्म सीखा था वो अखबारों से सीखा, वो टीवी से सीखा, वो रेडियो से सीखा, लेकिन आज का दौर बिल्कुल बदल चुका है। आज SEO का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। आपको क्या लगता है किस तरह पत्रकारिता बदल रही है?
2: बिल्कुल, देखिए, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पिछड़े हुए कहलाएंगे।
1: आई एम श्योर कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने भी कुछ कुछ चैलेंजेस होंगे जो शायद हमारे चैलेंजेस से बहुत अलग हैं। तो ऐसे में आप क्या चैलेंज देखती हैं उनके सामने?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और क्योंकि आप मोजो, जैसे हमारे कुछ बच्चों ने भी मेंशन किया, मोबाइल जर्नलिज्म, अब हर बच्चे के पास अपना एक मोबाइल तो है ही, तो आपके पास मोबाइल हमेशा है और आप कहीं भी कैमरा ऑन करके, रिकॉर्डर ऑन करके कोई भी चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है फैक्ट चेक की। क्या आपने फैक्ट्स को चेक किया है? क्या आप पीछे की जानकारी जो है या पहले जो घट चुका है उसे जानते हैं? आजकल के बच्चों के लिए यही एक सजेशन है, और उनकी तकलीफ या कठिनाई आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
1: और जर्नलिज्म में एथिक्स का क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स आगे जाकर जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएं वो मीडिया एथिक्स को होल्ड करके रखें, इसके लिए आपकी उन्हें क्या सलाह रहती है?
2: एथिक्स हम पढ़ाते क्लासरूम में है, लेकिन उनका एप्लीकेशन वो बाहर निकल कर देखते हैं जब आप उनको क्लासरूम असाइनमेंट्स देते हैं और इंटरनल असेसमेंट के लिए आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते। सिर्फ PPT तक सीमित ना रख के आप उन्हें कुछ ऐसा करने को कहते हैं जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी और जो वो अब तक सीख चुके हैं उसको पूरी तरीके से रखकर सामने दिखा सके। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। वो यहाँ स्टूडियोज में प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, एड्स बनाते हैं, डिजिटल मैगजीन बनाते हैं, न्यूज़लेटर बनाते हैं। अभी DULF हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल, तो पूरा जो न्यूज़लेटर का काम था उस फेस्टिवल का, वो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज है।
1: पत्रकारिता जो है बहुत ही चमकता हुआ फील्ड है। जब देखते हैं बच्चे टीवी में या सुनते हैं रेडियो तो वो खिंचे चले आते हैं इस फील्ड की तरफ, लेकिन असलियत कुछ और है। जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उन्हें जब ये पत्रकारिता का कोर्स कंप्लीट कर लें उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए?
3: बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है कि मास कम्युनिकेशन कोर्स की तरफ जो युवा आ रहा है उसे लगता है कि बस सिर्फ हमें जाना है, एक डिप्लोमा लेना है, एक डिग्री लेनी, और हम पर टीवी पर हमारा चेहरा आने लगेगा। और लगभग घर वालों की भी वही उम्मीदें होती हैं कि बस अब कोर्स करवा दिया है और अभी टीवी पे आके कल से खबरें पढ़ेंगे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी होती है, बहुत बड़ी साधना होती है। स्क्रीन पर आकर कुछ भी कह देना भर पत्रकारिता नहीं है। जिस तरह से हम स्कूल में या किसी अपनी किसी रिसर्च के लिए हम लगातार पढ़ते हैं, सिर्फ जहां हम देखते हैं कि जो पत्रकार का काम सिर्फ वो प्रेजेंट कर रहा है, कई स्थितियों में हम देखते हैं फंस जाते हैं, जो फील्ड पे नहीं गए, जिन्हें पता नहीं कि कैमरा कैसे काम करता है। तो मतलब इसके लिए बहुत गहन तैयारी की आवश्यकता होती है।
1: जो स्टूडेंट हैं वो जब यहाँ आते हैं तो बहुत जोश होता है उनमें, लेकिन धीमे धीमे जब उन्हें पता लगता है कि मीडिया की रियलिटी जो है वो एक्चुअली बहुत ही स्लो, आपको आगे ग्रो करना है, तो क्या उनके मन में एक निराशा होती है, एक डिमोटिवेशन होती है?
3: भ्रम टूट जाता है। अगर आप किसी भ्रम के साथ आए हैं तो भ्रम टूटेगा, लेकिन कुछ लोग जिस उत्साह के साथ आते हैं वो अंत तक बना रहता है।
1: जब एक स्टूडेंट जाता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की बात आती है, तो बुक्स की बजाय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की तरफ घूम जाता है और सारा उसका फोकस उस तरफ होता है। तो आपके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पत्रकारिता को कैसे एक नया रूप दिया है?
3: अगर जिसके पास शब्द कम है तो वो बेहतर पत्रकार नहीं बन पाएगा। दूसरा, AI मतलब चुनौती पैदा कर रहा है, लेकिन हमें सीखना भी होगा। हम तमाम ऐसे लोगों को जानते हैं जो समय के साथ नहीं बदले, आज मतलब वो कहीं गिनती में भी नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने सर। और जो कहते हैं कि जो कुछ पढ़ा है जब हम उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं तभी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। सर आपने बहुत कुछ सिखाया भी, जो हमारे और भी विद्यार्थी हैं जो पत्रकारिता कर रहे होंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद मैम।
1: अल्फा

0: एन कैंपस कॉलिंग के आज के एपिसोड में मैं आई हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, और मेरे साथ यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर संजय वर्मा सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
1: थैंक यू।
0: सर, ये जो इंस्टीट्यूट है, क्या यहाँ जो पढ़ाई होती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के और भी कई कॉलेजेस हैं जिनमें जर्नलिज्म पढ़ाया जा रहा है और बहुत पहले से, अब सर इस इंस्टीट्यूट की जरूरत आपके हिसाब से क्यों महसूस हुई?
1: क्योंकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेजेस चल रहे हैं, 7-8 कॉलेजेस हैं जहाँ इंग्लिश और हिंदी में जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है, लेकिन यूजी लेवल का है। और अभी लास्ट ईयर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के हिंदी डिपार्टमेंट में सिर्फ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का चलता था, मास्टर एज सच जो कि दोनों ही लैंग्वेज में वो कहीं नहीं था। तो ये 2017 में 2017 में को दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना हुई। इसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, तो 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बच्चा यूजी पीजी एक साथ होती है, और हमारा एक दूसरा कोर्स भी है मास्टर इन जर्नलिज्म MJ लेटरल एंट्री के लिए। तो दो कोर्सेज जो आपको यूजी पीजी कराने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एकमात्र दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है।
0: जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी जर्नलिज्म के कोर्सेज रन हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस में, क्या उनका करिकुलम और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है क्या वो दोनों सेम है?
1: जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस 7-8 कॉलेजेस जैसे मैंने बताया उसमें उनका सिलेबस अलग है, जो हमारा सिलेबस है वो टोटली अलग है क्योंकि ये पीजी वाला है और वहां मैंने आपको बताया यूजी लेवल का होता है। तो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो हम ऐसा कोर्स डिजाइन करते हैं कि 5-year में बच्चा सब कुछ सीख सके, प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल है, बहुत तरीके की चीजें। तो ये टोटल हमारा सिलेबस यहाँ का अलग।
0: सर, ऐसी क्या खास बात है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की जो इस इंस्टीट्यूशन को बहुत खास बनाती है?
1: ऐसे पत्रकार तैयार करें जो कि देश को पहले रखें, समाज को पहले रखें, तो इसी के लाइन पे हमारा सिलेबस है।
0: सर, आज जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको क्या लगता है कि आज मार्केट में कितना स्कोप है?
1: देखिए, अभी तो देखा जाए तो भारत में पूरे तरीके से जो जर्नलिज्म की ग्रोथ हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, थोड़ा इधर पिछले 20 सालों में ज्यादा हुई है 1990 और इस ग्लोबलाइजेशन के बाद से, तो देखा जाए तो अभी 30-40% ही एक तरीके से कहा जाए तो ग्रोथ हुई है। अभी भी रीच बहुत फार फ्लंग एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में या गांव में तक नहीं पहुंचे। अभी भी देखेंगे यूट्यूब वाले लोग वहां पहुंच रहे हैं या स्ट्रिंगर के थ्रू है, तो अभी पूरी तरीके से जर्नलिज्म की ग्रोथ तो हुई नहीं है, लेकिन एक अच्छे डायरेक्शन के साथ ग्रोथ और कंट्रोल्ड ग्रोथ की एक आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है ताकि हम मीडिया को, उद्देश्य है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना और उनको एंटरटेनमेंट, मीडिया जो भी हमारा इसका उद्देश्य है वो सब तक पहुंचे और सब जगह से स्टोरीज राइट टाइम पे आए। ऐसा ना हो कि हमारा स्ट्रिंगर हमें 2 दिन बाद दे रहा और आज हम लगा रहे उसकी स्टोरी की कोई वैल्यू नहीं रहे, रेलेवेंस ना रहे। तो इसलिए अभी मीडिया ग्रोथ बहुत पॉसिबल है और अच्छे जर्नलिस्ट पैदा करना ही हम जैसे संस्थानों का उद्देश्य है।
0: सर, कहते हैं हर जगह अब टेक्नोलॉजी की डिमांड है, हर जगह टेक्नोलॉजी जरूरी भी है, जैसा कि आपने बताया भी। सर, आपको क्या लगता है जर्नलिज्म में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है जर्नलिज्म को ग्रो करने के लिए?
1: देखिए, बिना टेक्नोलॉजी के तो जर्नलिज्म चल ही नहीं सकता है। इवन प्रिंट की भी देखा जाए तो आजकल लेटेस्ट प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं, पेपर की क्वालिटीज आ गई है, 4 कलर में सब में हो रहा है, तो बिना टेक्नोलॉजी के ये पॉसिबल नहीं है। और नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे आप ये देखिए बहुत सारे बड़े बड़े जो पत्रकार रहे हैं वो सब आजकल अब अपने घर से ही काम कर ले रहे हैं सारा कुछ। तो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो एक अकेला व्यक्ति भी अपने आप में एक संस्थान है।
0: सर, आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, और उसके बाद सर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आपने बताया कि आप भी एक पत्रकार रहे हैं, आपने भी किताबें लिखी हैं, आप भी एक प्रोफेसर रहे हैं, सर ये पूरी जो जर्नी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आप स्टूडेंट लाइफ में दोबारा पहुंच जाएं तो क्या फिर से आप पत्रकारिता को ही चुनेंगे?
1: जी, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी है कि इसका कोई एक सब्जेक्ट डोमेन नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान या धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तभी एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं आप। क्योंकि जैसे मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी DD न्यूज से थी, तो मेरे पास दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था कि मैंने इंग्लिश में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया और हिंदी भाषी क्षेत्र के होने कारण और हिंदी ठीक होने कारण, तो निश्चित तौर पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वापस से पत्रकारिता की दुनिया में ही जाना चाहूंगा।
0: सर, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर मैं कहूं कि गोल्डन मंत्रास कुछ दीजिए, मैं अगर आपकी तरफ से चाहूं कि जो 3 बातें उन्हें जरूर ध्यान रखनी चाहिए अगर वो एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं।
1: पहली बात, आपके अंदर मनुष्य होने का मतलब इस समाज को जानना, और समाज के अंदर जितने भी इसके जितने एलिमेंट्स हैं उसको अच्छे से जानना समझना, तभी आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। दूसरा, भाषा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। वैसे देखिए, अच्छा पत्रकार हो जिसकी बाइलिंगुअल कैपेबिलिटी हो, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपको इंग्लिश में आती हैं और हिंदी में ट्रांसलेशन, तो अगर आपकी दोनों भाषा में अच्छी पकड़ है देन यू कैन एबल टू ट्रांसलेट इट और अच्छा पैकेज आप तैयार कर सकते हो। तो दूसरा, भाषा है। तीसरा, आपको कोई ना कोई अखबार पढ़ने की आदत, क्योंकि देखिए पढ़ने की आदत होनी चाहिए, पढ़ना चाहे आप पत्रकार पेपर पढ़ें, बुक्स

0: पढ़ें, तभी एक अच्छी भाषा, अच्छा व्यक्तित्व और अच्छी जानकारी मिलेगी, तो बाकी की चीजें आपकी जो है कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी।
1: तो बहुत सारी जानकारी हमें मिली, और जो भी हमारे बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो बच्चे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आज वो केवल न केवल आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, बल्कि आई एम श्योर कि वो पढ़ने की आदत को भी डेवलप करेंगे। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आपने मौका दिया हम लोगों के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, इसके लिए आपको बहुत।
2: जी हाँ, और इसी तरह से हर बार हर हफ्ते हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, और ये सारी चीजें जो आज आपने सुनी, हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा वो पहुंची दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और वहां से उन्होंने जानकारी ये सारी इकट्ठा की आप सभी के लिए। न केवल जानकारी बल्कि बहुत से दृष्टिकोण भी समेट लाते हैं हम आपके लिए, यूनिवर्सिटी की मस्ती भी ले आते हैं आपके लिए, स्टूडेंट लाइफ से एक बार फिर से रूबरू कराते हैं आपको हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन आज का था बस यहीं तक, इसी के साथ स्वाति को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। थोड़ी देर में होगा प्रोग्राम सैटेलाइट्स, और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ आपको छोड़ जा रही हूँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई है।
1: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
0: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 6 বজাত হিন্দী আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত নিউজ শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে জাগৃতি শর্মা। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार

0: ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉ. सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youths.
1: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the well

लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन

2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉटपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, केनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट

0: स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
6: The earlier bill and the amendment today are